मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं मातृवंदना से। पहले सुनते हैं समूह स्वर में भीष्म सिंह चौहान की ये मातृवंदना।

आइए अब सुनते हैं सूरदास के स्वर में, आइए अब सुनते हैं शंकर शंभू के स्वर में सूरदास की ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए ए हरिहरन के स्वर में नारायण अग्रवाल नारायण की ये भक्ति रचना।

0: इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख डॉक्टर आनंद यादव का है।
1: एक राष्ट्र की सुदृढ़ता उसके नागरिकों की प्रगति या समृद्धि पर नहीं, बल्कि उनकी सकारात्मक मानसिकता यानी हृदय में विद्यमान परस्पर एकता और अखंडता की भावना पर निर्भर करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार स्वतंत्र हो जाने पर यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं तो यथार्थ में कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय एकता और संगठन को विकसित करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है, जैसे सामान्य भाषा, वेशभूषा, व्यवहार इत्यादि। 1942 में बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचन के बाद बाबा साहब ने भारत एक हो का अमर नारा दिया था। हमारे संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग संबोधन द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना की गई है। प्रथम भाग के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 13-36 तक प्रत्येक नागरिक को बिना किसी आधार पर भेदभाव अथवा पक्षपात के समान रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी सम्मिलित किया गया। स्वतंत्रता से आज तक भाषावाद, जातिवाद आदि नकारात्मक प्रवृत्तियां राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौती स्वरूप विद्यमान है। आतंकवाद जैसी समस्याएं हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, निष्ठापूर्ण दायित्वों और कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने का स्पष्ट द्योतक है। परिवार राष्ट्र रूपी भवन का आधार तल है, इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता से पूर्व सर्वप्रथम हमें पारिवारिक एकता अखंडता के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। शासन और प्रशासन से अपेक्षा से पहले स्वयं द्वारा इसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें प्रतिक्षण दिग्भ्रमित और विभाजित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान रहना होगा, तभी हम एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। महान आचार्य कौटिल्य प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अखंड भारत का स्वप्न देखा बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित करके व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जिस अद्भुत एकता का परिचय देशवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होकर दिया, उसी एकता की हमें आज भी आवश्यकता है। लाला लाजपत राय की राष्ट्रीय एकता की धारणा केवल हिंदू मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं थी, वे इसके साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। उनकी कल्पना का भारत न तो हिंदू राष्ट्र था और न मुस्लिम, न ईसाई या सिख राष्ट्र। यही हमारा प्रथम धर्म और कर्म है कि हम अमर शहीदों, राष्ट्रभक्तों के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दें और देश को सशक्त और समृद्ध बनाएं।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख डॉक्टर आनंद यादव का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडिया वेव और FMN पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। समय है श्री रामचरित मानस गान का। आज की कड़ी में मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर के हैं। आकाशवाणी की संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें ये कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का ये संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर के थे। आकाशवाणी के संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। समय है कृषि चर्चा का। विषय है ताजे पानी की मछलियों में होने वाले रोग एवं उनका नियंत्रण। जानकारी दे रही हैं देवती जायसवाल।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, ताजे पानी की मछलियों में होने वाले रोग एवं उनका नियंत्रण। मछलियों में होने वाले रोग और उनका सही इलाज। किसान भाइयों, आज के समय में मछली पालन बहुत लाभदायक व्यवसाय बन गया है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मछलियाँ अचानक बीमार पड़ जाती है, खाना बंद कर देती है या फिर अचानक मरने लग जाती है। इससे किसान को भारी भरकम नुकसान पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण होता है खराब पानी। हमारे मत्स्य पालन में जो तालाब होता है उसमें पानी की खराबी, ज्यादा चारा डाल देना और संक्रमण जैसे विभिन्न प्रकार का बीमारियां, जैसे मनुष्य को भी विभिन्न प्रकार का बीमारियां होती है, वैसे ही मछली को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, फफूंद संक्रमण, परजीवी संक्रमण। अगर हम समय पर रोग पहचान ले और सही दवा दे दें तो हम अपनी मछलियों को बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रमुख रोगों के बारे में समझते हैं। जैसे कि मछलियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई जाती है, जैसे जीवाणु संक्रमण, फिरॉट, टेरॉट, जो पंख और जो मछलियों का पूछ होता है वो सड़ जाता है, ड्रॉपसी, जैसे कि फिश का जो पेट रहता है वो फूल जाता है, पेट के अंदर पानी भर जाती है, वैसे ही होता है फंगल रोग। फंगल मतलब जो फफूंद होता है वो रोग होता है। तो फिश के स्किन में या फिर उसके मुंह के पास या फिर उसके पंख में हमको रुई की तरह जो संरचना दिखाई देती है वो होती है फंगल रोग। फिर होता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसमें शरीर के ऊपर सफेद बिंदु दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा, उससे हमको पता चलेगा कि उसको क्या है, परजीवी संक्रमण है। फिर होता है एक गिल डिसीज, गिल रोग होता है, जो कि मछली पानी के ऊपर आती है और सांस लेने में कठिनाइयां होती है और जो सांस लेती है उस गलफड़े को इन्फेक्ट करती है। फिर होता है एक परजीवी संक्रमण, पैरासाइट डिसीज बोलते हैं जिसको, होता है एंकर वार्म लर्निया के नाम से जाना जाता है। शरीर में धागे जैसा कीड़ा चिपका रहता है, मछली उससे बेचैन हो जाती है और मछली के खून को चूस लेता है। देन होता है वायरल रोग। वायरल रोग मतलब विषाणु रोग। विषाणु रोग ऐसा रोग होता है जिसका कोई उपचार नहीं होता है, वो अचानक आता है और मछलियों को पूरी तरह से मार देता है। फिर किसान भाइयों देखेंगे रोग के सामान्य संकेत। अगर आप ये लक्षण देखें तो तुरंत सावधान हो जाएं। मछली सतह पर आकर सांस लेने लग जाती है, खाना बंद कर देती है, पानी से बदबू आने लग जाती है, मछलियाँ इधर उधर भागती है, वो अच्छे से तैरती नहीं है, या फिर आपको मछलियाँ सुस्त दिखाई देगी, या फिर उनके आँख ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा, उसका जो कलर है वो डल हो जाएगा। ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। रोग नियंत्रण के सामान्य उपाय, पानी की नियमित जांच करते रहना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, ज्यादा भीड़ नहीं रखना चाहिए, इतना तालाब में हमारा हैबिट है डालने का उतना ही डालना चाहिए, समय समय पर चूना डालना चाहिए जिससे तालाब की पानी साफ रहे, तालाब की सफाई हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। दवा उपयोग में सावधानियां, जब हम किसी मछली को दवा देते हैं तो विशेषज्ञ से हमें सलाह ले लेना चाहिए, सही मात्रा में दवा डालना चाहिए, सुबह या शाम को दवा डालना चाहिए, दवा डालते समय ऑक्सीजन की व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दवा कभी नहीं डालना चाहिए, दवा जितना हमको डालना चाहिए उतना ही लिमिटेशन में

जानकारी दे रही थी श्रीमती देवती जायसवाल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में पहले दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8:30 पर। करंट अफेयर्स, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर होगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में 8:30 पर सुनेगा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमा शंकर। नवा बिहान, इस कार्यक्रम में सुनेगा वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रावधान के संबंध में राज्य योजना आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे नेमीचंद साहू। प्रसारण समय इसी सभा में 9:00।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:40 पर कलाकार होंगे माधव भागवत। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में इसी सभा में 10:00 सुनिएगा धोंदू ताई कुलकर्णी का काया राग कबीरी भैरव में ख्याल। इसी कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का काया राग भोपाली तोड़ी और दिन की पूरिया में ख्याल। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा विजय कुमार कुर्म का बांसुरी वादन, राग होगा बागेश्री और खमाज में धुन। अनुराग धारा कार्यक्रम में मराठी गीत सुनेगा, कलाकार होंगे शाहिर साबले और साथी। प्रसारण समय इसी सभा में 11:05 पर। छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर सिंगार आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी, इसमें आजकल में सुनेगा समस्या देखकर हार मत मानो, साथी होगा खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। प्रसारण समय शाम 5:10। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज के गोट का विषय होगा जल संरक्षण खातिर परंपरागत स्रोत के साफ सफाई। हेलो चौपाल में सुनिएगा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, इस विषय पर डॉक्टर एलिस तिर्की प्रमुख वैज्ञानिक पादप कार्य की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की सलाह। संचालन करेंगे लव कुमार सिंह, प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे रात 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 12:00, प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमारे गोट शाम 5:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया शाम 6:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार पहले संस्कृत में फिर हिंदी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः

0: Al Sharma. उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 305.81 मीटर।

यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोताओं, मिलता हमें वही है जो हम बांटते हैं। जिंदगी के बैंक में जब जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है, तब तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। प्यार का बैलेंस भरा रहे, इसलिए जरूरी है सबको प्यार बांटें। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आओ जिंदगी में प्यार बांटते चलें, एक दूसरे का हाथ थामते चलें, जोड़ते चलें दिलों की सब इकाइयां, नफरतों की खाइयों को पाटते चलें। आओ जिंदगी में प्यार बांटते चलें।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, जीवन सुख दुख की पाठशाला है और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बीच में रहना हमारी प्रवृत्ति है। श्रेष्ठ मानवीय गुणों के विकास के लिए मानवता का जीवित रहना बहुत जरूरी है। करुणा, सेवा, परोपकार और निस्वार्थ रूप से कई लोग दूसरों का भला करते हैं। कभी किसी संस्था के सदस्य के रूप में वे समाज सेवा करते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे ही एक संस्था है रेड क्रॉस मिशन, जो आपात स्थितियों में मानवीय पीड़ा को रोकने या कम करने का कार्य करती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये महसूस किया गया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो पूरे विश्व में शांति और सद्भाव ला सके, और इसके लिए आगे आए नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस इन्हीं के जन्मदिवस के दिन यानी हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। युद्ध, विभीषिका, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी आपातकाल परिस्थितियों में ये

विश्व के कई देशों में ये संस्था कार्य कर रही है। निस्वार्थ रूप से बिना किसी भेदभाव के निरंतर कई वर्षों से सक्रिय रेडक्रॉस मानवता के कल्याण के लिए जो अपना योगदान दे रही है वो अत्यंत सराहनीय है। आइए हम भी अपने समय में से कुछ समय मानवता की सेवा के लिए दें।

श्रोताओ, आज सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जी की जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। गिरिजा देवी बनारस घराने की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत और लोकप्रिय बनाने का श्रेय गिरिजा देवी को ही जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। गिरिजा देवी को संगीत विरासत में मिला था। 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायन की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में इनकी माँ और इनकी दादी इनके सार्वजनिक रूप से गायन का विरोध करती थी। 1990 के दशक में गिरिजा देवी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के एक सदस्य के रूप में कई छात्रों को संगीत की शिक्षा दी। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी माना जाता है। वे अपनी गायन शैली में अर्थशास्त्रीय गायन को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय गानों के साथ जोड़कर गाती थी, जिसके कारण उनकी गायी ठुमरी जल्द ही जनमानस में लोकप्रिय हो गई। विदुषी गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी और अन्य राज्यों के प्रायः सभी बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गिरिजा देवी ने अपने युग की रूढ़ियों के विरुद्ध कठिन संघर्ष करके भारतीय ठुमरी गायन को विश्वविख्यात पहचान दिलाई। देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा।

श्रोताओं, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त संबंधित बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। फलस्वरूप रोगी को गंभीर एनीमिया हो जाता है और उसे जीवित रहने के लिए नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो इस बीमारी से जूझते जूझते हार गए, और उन लोगों के लिए जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये दिवस उन मरीजों की सहायता करता है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इस बीमारी से रोकथाम के लिए ज़रूरी है शादी से पहले या गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया वाहक टेस्ट कराना। माता पिता के थैलेसीमिया माइनर होने से बच्चे में इस बीमारी के आने की संभावना 25% रहती है। थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता और शिक्षा से काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से काबू पा सकते हैं। आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि थैलेसीमिया माइनर के रोगियों की पहचान के लिए समुदाय स्तर में थैलेसीमिया की जांच कराएं, ताकि अगली पीढ़ी को इस रोग से बचाने के लिए डॉक्टर समुचित रूप से प्रयास कर सकें।

श्रोताओं, अब एक जानकारी युवाओं के लिए। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के तहत सब ऑडिटर पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भर्ती निकाली है। इच्छुक विद्यार्थी 22 मई तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक होगी। सब ऑडिटर के 69 पदों में से अनारक्षित वर्ग के लिए 29, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 और ओबीसी के लिए 10 पद आरक्षित हैं। 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रबंधन और अर्थशास्त्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को परीक्षा में अनिवार्य रूप से हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े और चप्पल पहनकर आना है। काले गहरे नीले और जामुनी रंग के कपड़े और जूते पहनना सख्त मना है। परीक्षा प्रदेश के 5 संभागों सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में आयोजित की जाएगी। तो श्रोताओं, वे प्रतिभागी जो इन विषयों के जानकार हैं और जिनके पास इनकी डिग्री है, वे अवश्य

श्रोताओं, प्रतिवर्ष 8 मई को यानी आज ही के दिन विश्व डिम्ब ग्रंथि कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 2,00,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस कैंसर से प्रतिवर्ष मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इस बीमारी के प्रति जागरूकता जरूरी है। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का इलाज तब हो सकता है जब ये अपने प्रथम या द्वितीय चरण में हो। इस बीमारी का पता इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि इसके लक्षण अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं, जैसे पेट फूलना, अचानक पेशाब करने की इच्छा होना, पेट में दर्द होना, जल्दी पेट भर जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का पता अक्सर अंतिम चरण में लगता है, इसलिए इसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसलिए उपरोक्त बताए गए लक्षणों को हल्के में ना लें, पहले डॉक्टर के पास जाएं और पूरी जांच कराएं। आइए तय करें कि शरीर में होने वाले किसी भी विकार को हल्के में नहीं लेंगे और डॉक्टर के पास जाकर पूरी तरह से जांच करवाएंगे। फिलहाल बारी है एक और गीत की।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, अगर आप महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी हैं तो जल्दी अपना KYC अपडेट करा लें। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी। अपात्र और मृत हितग्राहियों के नामों को हटाने के लिए KYC अपडेट कराना अनिवार्य है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत में 70,27,000 आवेदन प्राप्त हुए। जांच के बाद 70,09,000 महिलाएं पात्र पाई गईं। अपात्र और मृत हितग्राहियों को हटाने के बाद ये संख्या 69,00,000 रह गई है। 6 मई तक 45,00,000 महिलाओं का KYC हो चुका है। जिन महिलाओं ने अभी तक अपना KYC नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द चॉइस सेंटर या पार्षद कार्यालय में जाकर अपना KYC करवा लें। श्रोताओं, जागरूक रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि काम तुरंत हो जाता है, तो जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक रखिए। साथ ही साथ गीत संगीत का मजा भी लेते रहिए।

0: श्रोताओं, आए दिन हम अखबारों में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें ज्यादातर मौतें हेलमेट न लगाने के कारण होती है। सड़क सुरक्षा माह और समय समय पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है, पर कुछ चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट पहनने से जीवन की सुरक्षा के साथ साथ धूप, बरसात, हवा और ठंड सभी से बचा जा सकता है। साथ ही वाहनों का शोर भी कम सुनाई देता है और चालान का डर भी नहीं रहता है। तो अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें।
1: बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुँच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को

0: बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military acts

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, चूंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओं, हमारा छत्तीसगढ़ यूं तो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ कई तरह की बोली और भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ी का प्राचीन व्याकरण एवं समृद्ध साहित्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार, शोध और अनुवाद का लक्ष्य सुनिश्चित कर 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
0: इसी कार्य से जुड़े हुए हमारे साथ आज इनसे मिले कार्यक्रम में उपस्थित है प्रभात मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनसे आज हम जानेंगे इनके बारे में और जानेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में। साथ ही छत्तीसगढ़ में इनके कई और भी कार्य हैं, तो इनसे आज हम जानेंगे इस बारे में। प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद रमाशंकर जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
2: ऐसे है, पहले सभी श्रोता साथी मंडला में जोहार करत हूँ और आकाशवाणी रायपुर के भी मैं हृदय ले आभार प्रकट करत हूँ। और साथ ही साथ जो आज विषय पे हमार मन के गोड बात होना है, वहाँ विशेष रूप से जो चीज़ ला आप अभी पूछे हो मोर से, तो का है कि छुरिया राजनांदगांव मोर जन्म है और वहाँ के संस्कार धानी में जो हमन संस्कार पाए हैं ओला पा के हमन हाँ अपन ये आज के ये जो हमार दायित्व है जो आयोग के मिले है, तो वो ओला आगे और जो उद्देश्य है ओला हमन आगू बढ़ात हन। और साथ ही साथ हमार मन के जो प्राथमिक शिक्षा है सब हमार रायपुर में हो है और ओकर आगू के जो शिक्षा है महाविद्यालय शिक्षा वो दुर्गा महाविद्यालय से हो है। और जो मैं परा स्नातक जो करे हूँ वो है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला रायपुर से करे हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त जो शैक्षणिक जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि हम चूंकि अपने छत्तीसगढ़ महतारी के जो ओकर मन ओकर द्वारा जो प्रदत्त हमार जो संस्कार है ना ओकर छाँव में जो हमन पले बढ़े हैं, तो वही भाखा ला हमन हाँ यहाँ विस्तार दे के प्रयास करत हन पूरा प्रदेश में। तो इस विषय को लेकर के बस इतना ही यहाँ पे अपने श्रोता साथियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो राजभाषा जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है ये विधानसभा में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसको उसका भी उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। और वो है 2007 में वो पारित हुआ था और वो जो अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और विधानसभा में पारित होने के फलस्वरूप यह जो है राजभाषा के रूप में और राजभाषा के स्वरूप के साथ आज पर्यंत तक और आगे भी इस पे हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी के अतिरिक्त इसे अंगीकृत करने के लिए उपबंध किया गया है। तो मतलब आयोग जो है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वही कि हमारी जो भाषाई जो समृद्धि है, भाषाई जो हमारी विरासत है उसको समृद्ध करना, संरक्षण देना और संवर्धन देना, जिसमें सरगुजा से लेकर के हमारा जो नीचे जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आदिम बोलियां जो हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हमारा आयोग का मुख्य हेतु है।
0: छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित और संगठित करने में आपका क्या योगदान रहेगा?
2: देखिए, इसमें हमारी आयोग की जो महती भूमिका है वो जिसमें भाषाई जो विरासत है उसका दस्तावेजीकरण करना, उसको समृद्ध करना और प्रकाशन की जो स्थिति

0: है उसको यहाँ हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो साहित्य जो समूह है, उनके द्वारा लिखी जाने वाली छत्तीसगढ़ी में पुस्तकें जो हैं उसका प्रकाशन करना, ये आयोग का महती उद्देश्य है और आयोग इस कार्य में सतत लगा हुआ है। प्रकाशन के द्वारा लेखकों को छत्तीसगढ़ी भाषा में वो जो लिख करके जो अपना साहित्य चाहते हैं कि वो जनमानस में वो जाए आयोग के माध्यम से, तो इसके लिए आयोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में होकर मन के प्रकाशन करत है साहित्य के, और बोला पाठक तक कैसे पहुँचाए, पढ़िया मन तक कैसे पहुँचाए, और हमारे जो अध्ययन करने वाला छात्र छात्रा मन है, और हमारे बहुत सारा हमारे आम जनता तक वह कैसे सर सुलभ हो गए, एक लिए भी हमारे यहाँ चिंता करत हन। और आयोग है छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से लेखक बन के जो कृति है वह प्रकाशित करके वह सुलभ और उपलब्ध कराते, ये वहाँ आयोग है सतत लगे हुए है। साथ ही साथ जो एक जो बहुत मुख्य जो औ एक वो है कि राजकीय कार्यों में कैसे हम और अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा के हम कैसे उपयोग करें, ओकर लिए आयोग है समय समय पे शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय में जो मन पदस्थ है अधिकारी मन है कर्मचारी मन है वो मन ला भी प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी के लिए जो प्रशिक्षण है वो है आयोग देते।
1: तो प्रभात जी अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, तो क्यों ना प्रभात जी हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लें और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: मेरी पसंद का एक गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है और सर्वाधिक पसंदीदा गीतों में से एक है किशोर कुमार का फिल्म नमकीन राह पे रहते हैं, वो हमारे श्रोता साथियों को आप सुनाइए।
1: जी जी बहुत अच्छा गीत है, तो आइए श्रोताओं प्रभात मिश्रा जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोता इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रभात मिश्रा जी से, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं और वेटलैंड संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी को संरक्षण करने का जो एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसके साथ ही आप कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में निष्पक्षता को आप कैसे देखते हैं?
1: पत्रकारिता में निष्पक्षता की जो बात आपने पूछा है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्पक्षता जो है पत्रकारिता की एक अनिवार्य शर्त है। हमको इस बात के लिए कृत संकल्पित रहना चाहिए कि पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो पाठकों तक और उस विषय को यथा स्थिति स्वरूप में तथ्य के साथ उसे प्रस्तुत करना, और उसमें जो भी हमारा जो दृष्टिकोण है और उस विधा में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए या ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम पत्रकारिता हम जब कर रहे हों और पत्रकारिता में जिस प्रकार की हम निष्पक्ष पत्रकारिता की जब हम बात कर रहे हों तो उस विषय के साथ और उस रिपोर्टिंग के साथ हमारा वो भाव दिखना चाहिए हमारी भाषा में, हमारी प्रस्तुति में, हमारी उसमें शब्दों में, कि वह विषय वस्तु के साथ न्याय करते हुए वो दिखाई दे। न्याय की जिम्मेदारी तो खैर हम एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो पाठक वो तय करेगा, लेकिन एक पत्रकार को ये हम कहना चाहिए उसका वो दायित्व है कि वो विषयों को यथा स्थिति यथा स्वरूप में वैसा का ही वैसा प्रस्तुत करे। शेष जो है उसका निर्णय क्या होना है क्या नहीं होना है वो पाठक पर निर्भर करता है।
0: तो प्रभात जी, पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो इसके कई आयाम हो सकते हैं, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख आयाम हो सकते हैं?
1: देखिए, पत्रकारिता के जहाँ तक आयाम की हम बात करते हैं तो पत्रकारिता का एक बहुत ही व्यापक एक संसार है, और उस व्यापक संसार में पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं तो वो मूल्यों की पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिसमें कहना चाहिए वैल्यू बेस्ड वैल्यू की हम बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, और हम एक तरह से पत्रकारिता को एक प्रकाश स्तंभ की तरह लेते हैं, एक मशाल की तरह लेते हैं कि जिसके प्रकाश में हम सब

0: जो है एक जो हमारा समाज का जो हमारा एक आदर्श जो मार्ग है समाज को पुष्पित पल्लवित करने का, जिसमें समाज जीवन के सारे रंग सारे आयाम बहुत व्यवस्थित ढंग से हों, उसमें व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें यदि हम देखें तो पत्रकारिता जो है अपना एक अहम योगदान देते हुए दिखाई देती है। और पत्रकारिता ने ऐसा बहुत कुछ किया भी है कि आज समाज में समाज को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, एक अच्छा अच्छी रचना करने के लिए, इस हेतु समाज में जिस प्रकार की पत्रकारिता हमारे अभी हमारे समाज में हमारे देश में हमारे प्रदेश में हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहिए। सार्थक लाभ जो है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जो है पत्रकारिता का जो संदेश है, मूल्याधारित पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, उसका संदेश जो है बहुत अच्छा गया है और उन कार्यों की परिणति जो है समाज हित में भली भांति दिखाई देती है। क्योंकि हम यदि हम बात करते हैं अपने व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए, तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता को मतलब एक चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का।
1: जी जी जी जी प्रभात जी। तो प्रभात जी, हम आप चलते हैं फिर से एक बार राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की तरफ। तो पारंपरिक विविधताएं हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी हैं, तो इन विविधताओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को स्थान दिलाना कितना आवश्यक है?
0: बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें भी इस बात का आग्रह किया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले, उनको भी जो है कहना चाहिए कि उनको उनकी मातृभाषा में उनको दिया जाए। तो इसका आशय क्या है कि मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उन चीज़ों को अच्छे से समझेगा, और अच्छे से समझेगा तो उन चीज़ों को अच्छे से वो अभिव्यक्ति दे पाएगा, और अभिव्यक्ति देगा तो वो कहना चाहिए अपनी जो सांस्कृतिक जो समझ है, अपने प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, जो और भी जो हमारी पहचान है, अपनी अस्मिता है, उससे वो सीधे कनेक्ट हो पाएगा, सीधे संबंधित हो पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी जो मातृभाषा है उसमें उसको जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। विशेषकर जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम ये देते हैं मातृभाषा में, तो बच्चा जो होता है वो बेहतर वो आत्मविश्वास के साथ अपने स्वयं को समझता है और जिस शिक्षा को वो ग्रहण करने जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाता है और संस्कृति से भी वो अच्छे से जुड़ पाता है।
1: तो प्रभात जी, जब हम बात करते हैं राजभाषा की, तो वो किसी प्रादेशिक स्थान होते ही उसकी जो प्रमुख होती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रादेशिक भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम राजभाषा को महत्व देते हैं, इसमें कहीं हम हिंदी को ना खो दे, ऐसा आपको क्या लगता है?
0: नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी विषय कहीं कुछ भी नहीं है खोने का। देखिए, होता यह है कि हमारा जो भाषाई जो संसार है वो बहुत समृद्ध है जी। और आप देखते भी होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो बहुभाषी कहना चाहिए राष्ट्र है जी। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं और भाषाओं के साथ साथ बोलियां भी बहुत सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं का जो स्वरूप है और भाषाई जो रचनात्मकता है वो समन्वयकारी है और समन्वय के साथ साथ समरसता लिए हुए है। इसका आशय इस ढंग से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाषाई जो संसार है वो अस्तित्व और सह अस्तित्व के आधार पर हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ समन्वय है भाषाओं को लेकर के, और इसी समन्वय के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको हमको समझना होगा और इसको समझते हुए आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और भाषाई जो समृद्धि है, जो हमारी भाषाई विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी हो, हमारी अन्य जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, इन सब में एक जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन का एक परिवार जो होता है उस प्रकार का संबंध लिए हुए है, और जो कहना चाहिए परिवार में जो एक भाव होता है उस भाव के आधार

0: कि गर्मी कितने चरम पे है और उसका सीधा प्रभाव हम जलचर थलचर और नभचर जो हमारा जैव मंडल है बायोस्फीयर है उस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम जब बात कर रहे हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड का आशय जो है हिंदी में वो ये है कि हम उसे नम भूमि बोलते हैं, जलोद भूमि भी बोलते हैं, दलदली भूमि भी बोलते हैं। और किसी भी कहना चाहिए क्षेत्र में किसी भी पर्यावरणीय संतुलन के लिए वेटलैंड का जलोद भूमि नम भूमि का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे वेटलैंड हैं वो जब अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं तो उससे एक प्रकार की जैव विविधता बनी रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, जो हमारा भूगर्भ जो जल का जो स्तर है उसको भी वो बना के रखते हैं, साथ ही साथ बाढ़ को भी रोकने का काम करते हैं जब बाढ़ आती है तो। और इसके अतिरिक्त हमारे वातावरण को इतना कहना चाहिए वो अच्छा बना के रखने का प्रयास करते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो परिशुद्ध भी करते हैं
1: जी जी।
0: तो वेटलैंड जो है एक साथ अपनी कई भूमिकाओं में हमारे आसपास के जनजीवन को सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से हमें संजीवनी प्रदान करता है और साथ ही साथ हम लोगों को एक आजीविका भी उपलब्ध कराता है। तो वेटलैंड जो है उसकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। ये अलग बात है कि हम वेटलैंड के महत्व को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ज़्यादा हम मानवीय दृष्टिकोण से और मानव समाज के लिए हितकारी होगा। इस बात को और मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि एक वेटलैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल वेटलैंड और एक होता है मैन मेड वेटलैंड यानी मानव निर्मित वेटलैंड और एक प्राकृतिक रूप से वेटलैंड होते हैं। तो मानव निर्मित वेटलैंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित वेटलैंड जो हैं वो तालाब होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं और बना करके हमारे पूर्वजों ने हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों की संस्कृति रही है। तालाब हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि हमारे नगरों में तालाब जो हैं अपने उस वैभव के साथ हैं और उस वैभव का कहना चाहिए जब हमारे पूर्वजों ने इन तालाबों का निर्माण किया था तो उसका जो है आज भी हमें लाभ मिल रहा है। आज देखिए तालाब जहाँ जहाँ हैं वहाँ प्राकृतिक रूप से जो उसके जल स्रोत हैं वो बने हुए हैं और उन तालाबों को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम यदि इतिहास में हम यदि जाएं तो एक इकाई होती थी तालाब बनाने वालों की और एक तालाब बनवाने वालों की
1: जी।
0: तो ये दो इकाइयां मिलकर के तालाब बनाती थी और बनवाती थी। कोई अपने माता पिता की स्मृति में कोई बनाता था, कोई परोपकार के भाव से तालाब खुदवाता था, कहीं पे राजा जो हैं तालाब खुदवाते थे, कहीं पे रंख भी जो होते थे वो तालाब खुदवाते थे। और पुण्य का काम यदि कोई माना जाता था हमारे भारतीय संस्कृति में तो वो तालाब खुदवाना माना जाता था
1: जी जी।
0: उनको ये मालूम था कि ये जो वेटलैंड है ये न केवल हमको जीते जी हमको बचा के रखेंगे संभाल के रखेंगे अपितु आने वाली पीढ़ी को भी ये संरक्षित करेंगे संवर्धित करेंगे और उनका जो जीवन है इससे कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन भी होगा।
1: प्रभात मिश्रा जी, कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज परिवार और प्रकृति इन तीनों का जो समन्वय है जिसकी आधारशिला हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रखी गई है हमारी संस्कृति में और उस संस्कृति में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये पूरी वसुंधरा और पूरे सभी लोगों को सुख और शांति देने का जो भाव हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है उसी भाव के अनुरूप हम अपने समाज को अपने परिवार को और प्रकृति को जितना ज़्यादा हो सके संरक्षित करें संवर्धित करें ताकि ये वसुंधरा जो है बहुत अपनी उस स्वाभाविकता में उसी स्वरूप में रहे जिस स्वरूप में वो हमें प्राप्त हुई है जिस स्वरूप में हम

0: उसमें जीवन जी रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी वसुंधरा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही वसुंधरा है, एक ही वसुधा है, एक ही पृथ्वी है। उसे यदि हम जितना हो सके हम बचा के रखें, संरक्षित करके रखें, तो हमारा मानव जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। श्रोता साथियों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा, जब हम गर्मी की तपिश को हम एक तरह से झेल रहे हैं और वो हमें बहुत ही प्रभावित कर रही है, आप जहाँ जहाँ पे वेटलैंड देखते हैं वहाँ वहाँ आप उन चीज़ों को लेकर के हमारे वेटलैंड को संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें, क्योंकि यही वेटलैंड जो है हमको बचाएंगे, और क्योंकि यदि ये बचेंगे तब वो हमको बचाएंगे। तो वेटलैंड को आप जहाँ भी देखें उसको संरक्षित करें, और इसके लिए जो भी प्रयास हो, शासकीय स्तर पे हो चाहे वो नागरिक स्तर पे हो, आप अपनी तरफ से ऐसा प्रयास कीजिए कि वेटलैंड को कोई नष्ट ना करे, वेटलैंड को लोग एक ऐसा जो हमारे लिए वो जीवन दायिनी है ना, वो हमारे लिए जीवन प्रदाता है, वो हमको जीवन हमें देता है। तो आप जहाँ भी रहें वेटलैंड को बचाने के लिए सक्रिय रहें, अपने नज़दीक के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जाएं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और कोई ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ जा करके आप वेटलैंड को बचाने के सारे उपाय करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आज जहाँ भी मैंने वेटलैंड पे मैंने काम किया है, उसके लिए जो भी हमारे लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत वेटलैंड को बचाने का जो हमने प्रयास, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। शासन स्तर पे भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, शासन के साथ प्रशासन में भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप एक पहल करें, और उस पहल में आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि केवल हमारा उद्देश्य है वेटलैंड संरक्षित हो।
1: प्रभात जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार,
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमा शंकर। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। नवा बिहान, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रावधान के संबंध में राज्य योजना आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू।

0: जम्मो श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। जीव जंतु पशु पक्षी ह प्रकृति के सिंगार आय, नाचत मयूर कोयल के कूक और चिड़िया मन के चहचहाट हमन ला बरबस ही आकर्षित कर लेते। और पशु पक्षी के बहुत अकन गुण ला देख के ही मनुष्य के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास घलो होते। पर धीरे धीरे वन्य जीव जंतु मन के संख्या ह घटत जावत है और ओकर मन के संरक्षण खातिर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम बनाए गए है। एकर संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम जिला। सुब्रमण्यम जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
1: नमस्कार
0: सर, आखिर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाए के आवश्यकता काबर पड़ी, एकर पीछे के पृष्ठभूमि का है?
1: हमारे देश में अलग अलग किस्म के वन्य हैं, वनों के प्रकार अलग अलग हैं, उनके पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, उनमें पाए जाने वाले जीव जंतु भी अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी का दबाव बढ़ता जा

0: रहा है, तो हम अपनी कृषि की आवश्यकताओं के लिए, कल कारखानों को स्थापित करने के लिए, बांध नहरों का जाल बिछाने के लिए, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये सबको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जंगल जो हैं हमारे कम होते जा रहे हैं। ऐसे समय में जो वन्य प्राणियों का जो प्राकृतिक पर्यावास है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और उसके नुकसान पहुंचने के कारण ये बहुत बार देखने में आता है कि वन्य और वन प्राणी और इंसानों के बीच में काफी बार द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, और इसके कारण कई बार ग्रामवासी शिकार भी करने लगते हैं, लोग भी शिकार करने लगते हैं, तो वन्य प्राणियों की आबादी, चूंकि उनके पर्यावास सीमित होते जा रहे हैं, उनके जो हैबिटेट है वो कम होते जा रहे हैं, इसके कारण वन्य प्राणियों का जीवन, जो उनका अस्तित्व है, वो संकट में आ गया। तो उसे रोकने के लिए वर्ष 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाया गया।
1: अवैध शिकार ला नियंत्रित करे बार का दंडात्मक प्रावधान रखेगी
0: वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें वनाधिकारियों को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं कि खास तौर से हमारे यहाँ जो इस अधिनियम के तहत कुछ क्षेत्रों को हमने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, कुछ जगह पे राष्ट्रीय उद्यान बनाए हुए हैं, कुछ जगह पे अभयारण्य हैं, और कुछ जगह पे हमने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एरियाज बनाए हैं, कुछ जगह पे प्रोजेक्ट टाइगर हमारे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहे हैं, ये सारे जगहों को हमने विशेष संरक्षित क्षेत्र माना है, और इसमें किसी भी प्रकार की अवैध शिकार की घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है। और न केवल संरक्षित क्षेत्रों में, बल्कि जंगल, चाहे वो आरक्षित वन हो, चाहे संरक्षित वन हो, चाहे इवन गांव के अंदर में भी अगर जंगली जानवर का कोई शिकार करता है तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है, क्योंकि इन वन्य प्राणियों का संरक्षण ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। और वन्य प्राणियों का अगर शिकार होगा तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। कोई ऐसा जानवर है जो बहुतायत में है तो कई बार हम कंपाउंडिंग यानी प्रशमन करते हैं, यानी उससे हमने कंपनसेट कर लिया जाता है, उससे कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको, प्रशमन कर लिया जाता है। और अगर बड़े शिकार होते हैं तो हम उसको मामले को अदालत में ले जाते हैं, और अदालत में इसके लिए दंडात्मक प्रावधान 3 साल 5 साल 7 साल ऐसे सजा के प्रावधान है।
1: वैसे सर सामान्य तरीके ले यदि देखा जाए तो कोई भी प्राणी या जीव जंतु ला नुकसान पहुंचाना, ये भी तो प्रावधान है सर, चिड़िया मन ला नुकसान पहुंचाना, कोई प्राणी ला नुकसान पहुंचाना।
0: प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट करके कानून है जो किसी भी जानवर के ऊपर यदि क्रूरता से व्यवहार किया उसके साथ तो उसके लिए एक अलग पृथक से दंड के प्रावधान है। लेकिन हम सामान्यतः जब हम वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात करते हैं तो हम उन प्राणियों की बात करते हैं जो सामान्यतः जंगल में रहते हैं, और चाहे उसमें बड़े जीव जंतु जैसे शेर है, भालू है, चीता है, सांभर है, नीलगाय है, लोमड़ी है, इसके अलावा सांप है, सांप की कई प्रजातियां हैं जो जंगल में हैं, कई छिपकलियों की कई प्रजातियां हैं जो जंगल में हैं, जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं, जो एंडेंजर्ड हो रही हैं, यानी हो सकता है कुछ समय में उनकी पूरी आबादी समूल रूप से नष्ट हो जाए, उन्हें संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी जैव विविधता के आवश्यक अंग है, ये पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला में उनकी अपनी एक भूमिका है, तो उन्हें बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अधिनियम में ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं कि वन्य प्राणी हो या वन्य से बाहर निकल के भी जो प्राणी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा जंगल घट रहे हैं, तो ये वन्य प्राणियों को अपने पानी की तलाश में वो कई बार गांव के पास पहुंच जाते हैं, कई बार वो कई हमारे नील गाय है जो शाकाहारी पशु है वो खेतों की तरफ आ जाते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे समय में गांव वाले और जंगली जानवरों के बीच में द्वंद्व होना बड़ा स्वाभाविक है। कई बार सुअर जो है, आलू की खेती है, कुछ ऐसी जमीन के नीचे जो कंद वाले सब प्रकार हैं उनको खोद के वो नुकसान पहुंचाते हैं, नीलगाय जैसी वो धान के खेत को चर जाएगी, या आपने दलहन और तिलहनी फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, तो किसानों को नुकसान होने की संभावना रहती है, और उस समय में किसान हो सकता है कि वो आक्रोश में इन जंगली जानवरों का शिकार करें या इन्हें नुकसान पहुंचाए, तो उसे रोका भी जाना जरूरी है, और इसके लिए किसानों को हुई नुकसानी की भरपाई के लिए मुआवजे की भी प्रावधान है। किसानों से यही उम्मीद की जाती है कि इन जंगली जानवरों को आप नुकसान न पहुंचाएं, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शासन करेगी, लेकिन जंगली जानवरों को आप यथासंभव नुकसान न पहुंचाएं।
1: अच्छा सर, जंगली जानवर ले फसल नुकसान मत हो के कई जन मन अपन खेत के चारों तरफ कटीले तार ओमे विद्युत धारा घलो प्रवाह कर देते, जेकर कारण कई जंगली जानवर मन हा वो करंट ले मृत्यु घलो हो जाते
0: जी, जी।
1: तो ऐसन करना गलत है ना?
0: बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। कटीले तार से अगर आपने बागड़ बनाई अपने खेत को

0: बचाने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने खेत की रक्षा के लिए आपने काम किया है, लेकिन उसमें विद्युत तरंगों को दौड़ाना यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना और जिससे कि वो जानवर झटका खा के हो सकता है खत्म हो जाए, तो ये गैर कानूनी है और इसके लिए दांडिक प्रावधान, जैसे मैंने आपसे कहा वन संरक्षण अधिनियम में उसके भी प्रावधान है।
1: वन्य जीव के वर्तमान स्थिति का है और वन्य जीव की गणना कैसे करे जाते हैं?
0: कुछ प्रजातियां जो हमारे हाथ से लगभग खत्म होती जा रही थी इस कानून के आने के बाद और इस कानून के निष्पादन के बाद, कानून को सख्ती से जब लागू करना शुरू किया गया तो जो प्रजातियां हमारे हाथ से फिसल रही थी वो सब प्रजातियों में फिर से हम देख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपसे एक समस्या बताई कि जंगल अगर क्षेत्रफल में कम होता जाएगा और जंगल का जो घनत्व है अगर वो कम होगा, जंगल में पानी की व्यवस्था कम होगी, तो ऐसे समय में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। हम किसी भी जंगल को देखते हैं कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी उसकी धारण क्षमता कितनी है। यदि धारण क्षमता से ज़्यादा जानवर होंगे तो निश्चित रूप से वो आबादी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे और यदि उससे कम होंगे तो उसको बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये जो आपका प्रश्न है जिसमें हमने कहा कि जंगली जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में ही पहले हम कह रहे थे करीब 17 हमारे पास शेर हैं, आज वो बढ़कर के करीब 35 शेर के करीब हो गए। तो इनकी गणना सामान्यतः हम गर्मी के दिनों में करते हैं क्योंकि इस समय जंगल के अंदर में जो पानी के क्षेत्र हैं जिनको हम वाटर होल्स बोलते हैं उसके आसपास वो आते हैं पानी पीने के लिए, तो उस समय उनके जो फुटप्रिंट होते हैं, पगमार्क होते हैं, उसके आधार पर हम धारण करते हैं बड़े जानवरों का। और ऐसे ही आजकल कैमरा ट्रैप पद्धति है जिसे कैमरे से उनको फोटो भी खींच लेते हैं कि कई एक जानवर दो बार तो गिनती में नहीं आ रहा है क्योंकि सबकी जो पट्टे लगे रहते हैं, पट्टी होती है उनके प्राकृतिक पट्टी, वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे हमारे दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करते हैं, अंगूठे के निशान मैच नहीं करते हैं, वैसे ही शेर के और बड़े जानवरों के जो पट्टे होते हैं वो एक समान नहीं होते, तो उसके आधार पर हम अंतर पता कर सकते हैं कि ये शेर की गणना कहीं दो बार तो नहीं हो गई है उसी शेर की।
1: अभी आप बताते रहे सर कि गर्मी के मौसम में पेयजल के नज़दीक जीव जंतु मन आते पानी पियवर करके, तो सर जंगल में पानी की कमी हो जाते तो पेयजल की व्यवस्था कैसे करे जाते सर?
0: देखिए जंगल में वाटर होल्स जो है या तो प्राकृतिक रूप से जो डिप्रेशन वाला ऐसा क्षेत्र जहां पर हमेशा से पानी रुकता रहा है जी, उसी जगह को अगर हमने गहरा कर दिया तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये गर्मी के दिनों में ये सुनिश्चित किया जाता है फरवरी मार्च से ही हमारे वाटर होल्स में पानी पर्याप्त है कि नहीं, क्योंकि पूरी गर्मी उनको निकालनी है जून जुलाई महीने तक, जब तक बारिश ना हो जाए तब तक वाटर होल्स में पर्याप्त पानी होना चाहिए। वैसे ही हमारे जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनको नमक की जरूरत पड़ती है, तो नमक की चट्टी प्राकृतिक रूप से हमारे कई जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होती हैं, उसमें नमक पाई जाती है। आपने देखा होगा कई बार ये जानवर जाके उन चट्टानों को चाटने लगते हैं, वो चाटने इसलिए लगते हैं क्योंकि उन चट्टानों में नमक होता है और उनके डाइजेशन के लिए, उनके पाचन तंत्र के लिए, क्योंकि घास और शाकाहारी जानवर हैं तो उसके लिए उनको नमक की जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन के लिए, जो उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है तो इसलिए करते हैं। तो ऐसे समय में कई बार हम नमक की चट्टियां भी वहां पर रखते हैं ताकि ये शाकाहारी जानवर जाके उसको चाटे और उनकी पाचन तंत्र व्यवस्थित रहे।
1: सर वर्तमान समय में मानव और वन्य प्राणी के बीच द्वंद बढ़ जाते, एकर पीछे कारण का है?
0: हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए या जिसे हम विकास कहते हैं इसके लिए हमने आबादी बढ़ी तो हमारे खेत बढ़ने लगे और खेत जो है कई बार जंगलों का अतिक्रमण करके लोगों ने खेत बना लिया और ऐसे ही हमारे कल कारखाने उद्योग आने लगे, कई जगह पे माइनिंग खदान आ गए, खदान में आप जो है ब्लास्टिंग करते हैं, विस्फोटक लगा के ब्लास्टिंग करते हैं, इससे ये जंगली जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा ये जंगली जानवरों का चूंकि रहवास प्रभावित हो रहा है इन सब गतिविधियों से तो वो आबादी की क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण मैं दूं तो सरगुजा के आसपास पहले हाथी हुआ करते थे, कोरबा लेमरू उन एरियाज में, आज वो हाथी वहां पर उत्खनन के काम होने लगे, खनन के काम होने लगे, जंगल डिस्टर्ब होने लगे तो वो बढ़ करके दूसरी जगहों पर आ रहे हैं, कांकेर और भानुप्रतापपुर तक हाथी आ रहे हैं। पहले कभी नहीं सुना गया था कि इन क्षेत्रों में हाथी रहे, लेकिन हाथी का जो अपना कॉरिडोर है जिस एक जंगल से दूसरे जंगल वो जाते थे तो जंगलों के बीच से ही जाते थे, अब बीच के जंगल हट गए, वहां पर खेती होने लगी, वहां पर बसाहट आ गई, वहां गांव बस गए, तो उनका जो प्राकृतिक पर्यावास था और जो उनका गलियारा था जिसमें एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे वो गलियारा खत्म हो, तो इसके लिए उनको मानवों के बीच से होके जाना पड़ता है। तो उस समय में खेत बीच में आते हैं तो खेतों को नुकसान हो जाता है, कई जगह पर हमारे गांव वाले

0: महुए को चुन के रखते हैं या गन्ने की खेती करते हैं तो महुए की लालच में, गन्ने की लालच में हाथी इंसानों की बस्तियों की तरफ आने लगता है। तो इसको चूंकि हमने उनके जंगलों को बर्बाद किया, उनके जंगलों को नुकसान पहुंचाया, वो उनका प्राकृतिक पर्यावास था, उसको अगर हमने क्षति पहुंचाई तो निश्चित रूप से वो हमारे क्षेत्र में, मतलब आबादी के क्षेत्र में वो आने लगते हैं और इसी के कारण ये जो टकराहट है ये होने लगती है। तो इसलिए जंगल को बढ़ाना जरूरी है, उनके गलियारों को सुरक्षित रखना जरूरी है और जो खेती और दिगर वो है जिसके लिए हम जंगल को काटते हैं, उत्खनन के लिए, खनन के लिए जंगल को काटते हैं, बांध बनाने के लिए जंगलों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये वन्य जीव जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपने क्षेत्र से बाहर निकल के आबादी की तरफ आने लगे।
1: सर, वन्य प्राणी संरक्षण में सामान्य व्यक्ति कौन ढंग ले अपन भूमिका निभा सकते हैं? सर
0: देखिए, सबसे पहले हमारे लोगों के बीच में एक जन जागृति होनी चाहिए कि ये जो वन्य प्राणी हैं ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। मित्र इस तरीके से हैं कि पूरा जो प्राकृतिक पर्यावास है, जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें उनकी भूमिका है। यदि आपके जंगली जानवर, अगर नीलगाय, सांभर, चीतल, ये अगर आपके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनके ऊपर आश्रित जो है शेर भी वही हैं, तेंदुआ भी वही हैं, ये इनका शिकार करते हैं और आपके मतलब किसानों को जो नुकसान होना है उसको काफी हद तक कम कर देते हैं। तो इसलिए जंगल का, जानवरों का रहना इंसानों के लिए जरूरी है क्योंकि जंगल से ही पानी जो है निकल करके मैदानों में आता है। तो जंगली क्षेत्रों में और खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल का होना बहुत जरूरी है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जंगल कट जाएंगे तो अब मिट्टी का कटाव होने लगेगा, वो सारी मिट्टी बह के आएगी और हमारे जो बांध बने हैं उसमें गाद के रूप में जमा हो जाएगी, बांधों की जलधारण क्षमता कम हो जाएगी, ये बहुत सारे उसके दुष्परिणाम हमको दिखाई देंगे। तो इसलिए ग्रामवासियों को चाहिए कि जंगली जानवर का शिकार न करें और बल्कि कई जगह पे मैंने देख रहा हूँ, जो भी खासतौर से हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य है, ऐसे क्षेत्र जहाँ जंगली जानवर ज़्यादा दिखाई देते हैं वहाँ पर्यटक लोग भी आते हैं और वो पर्यटकों से स्थानीय ग्रामवासियों की आय भी होती है। तो ग्रामवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है वन्य प्राणियों के संरक्षण में क्योंकि अकेला वन विभाग जो है इतने बड़े जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणियों के संरक्षण में जब तक स्थानीय सहभागिता नहीं होगी करना बड़ा मुश्किल होगा।
1: के सुब्रमण्यम जी, आप मन हमार श्रोता मल्ला वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में विस्तार ले जानकारी दे हो, हम अल्ला समय दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।

नवा बिहान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रावधान के संबंध में राज्य योजना आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता थे नेमीचंद साहू। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का पहला गीत, जिसके लिए आवाजें हैं पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर और साथियों की आवाजों में समीर की रचना। संगीत जतिन ललित का है। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है त्रिदेव।

त्रिदेव फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं माधव भागवत। पहले सुनते हैं माधव भागवत की आवाज में नसीम ग्वालियरी का ये कलाम।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं माधव भागवत।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं माधव भागवत। आइए सुनते हैं माधव भागवत की आवाज में नसीम ग्वालियरी की ये गजल।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे माधव भागवत। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर कलाकार होंगे पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने इन समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 शुरू होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2,000 से अधिक छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। समूह नृत्य, नाटक, प्रहसन और चित्रकला के माध्यम से रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता संदेश दिया जाएगा। वहीं शाम 4:30 आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और पर के संदेश को भी बढ़ावा देगा। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट से बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के

0: बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी, जहां समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज 20 से अधिक स्थानों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, बिजली गिरने और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इधर गुरुवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धोंदूताई कुलकर्णी का काया राग कबीरी भैरव में ख्याल। विलंबित अदा चौताल में निपत है। बोल हैं एरी एरी मैं अपने शिवा पायो। आपके साथ हारमोनियम पर हैं उद्भव रानाडे, तबले पर संगतकार हैं श्रीधर पाध्ये और सारंगी पर हैं अनंत खुंटे। तो लीजिए सुनिए धोंदू ताई कुलकर्णी का काया राग कबीरी भैरव में ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे धोंदूताई कुलकर्णी का गाया राग कबीरी भैरव में ख्याल। आपके साथ हारमोनियम पर थे उद्भव रानाडे, तबले पर संगतकार थे श्रीधर पाध्ये और सारंगी पर थे अनंत खुंटे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का अब यहीं समापन होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं और अब समय हो चला है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का पहला गीत आवाज और संगीत है जगजीत सिंह का। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में गुलजार की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है मासूम।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए जावेद अख्तर की रचना। संगीत कुलदीप सिंह का है। फिल्म का नाम है साथ साथ।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में यलगार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था सुदर्शन फाकिर ने, संगीत तैयार किया था चन्नी सिंह ने। और इसी के साथ चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आपको बतला दें, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 11:30 पर मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 11 बजने को हैं, हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्त, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है।

0: बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
1: आकाशवाणी भारत की धड़कन था।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में आइए सुनते हैं मराठी लोकगीत। कलाकार हैं शाहिर साबले और साथी। पहले सुनते हैं देवदत्त साबले और साथियों के स्वर में ये मराठी लोकगीत।

अनुराग धारा कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए देवदत्त साबले और साथियों के स्वर में मधुकर आर कड़े की ये रचना।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में अभी आप सुन रहे थे मराठी गीत। कलाकार थे शाहिर साबले और साथी। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम के युगल सरों में समीर की लिखी यह रचना। संगीत आनंद मिलिंद का है, फिल्म का नाम है वंश।

आइए अब सुनते हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में जावेद अख्तर की रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 125 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर हुई है। जिले के 3 धान खरीदी केंद्रों कीरित, कड़ारी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद 3 थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। ये सभी 7 आरोपी फरार बताए जाते हैं। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय

0: को भेज दिया है। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हो रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित चार लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 1.25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10

0: 1984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर

स्वीडिश अकादमी की नोबल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुर

0: बाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थी।

उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाई बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला, आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश, तोमार बाताश, आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।

0: আমাদের শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ হুয়া, जिसमें রবীন্দ্রনাথ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रवींद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रवींद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रवींद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रवींद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रवींद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार।

सुर सिंगार कार्यक्रम सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मन ला राजकुमार की नमस्कार। कार्यक्रम में पहली आप मन ला सुनवावतन केदार यादव और संगवारी मन के गाय ए गीत जेखर बर हमला ईमेल और पाती पठोए हवे हमर ए श्रोता संगवारी मन। सिर्री गाता पारा ले लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू मन। रामानिया चौक भाटापारा ले मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद ताहिर। चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। बनियापारा धमतरी ले रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। सिरमुंडा ले सूरज कुमार कामले, हेमा दामले, कांतिबाई, राजेंद्र कुमार दामले। बेरला ले ए आर नेताम, शीतलानगर दुर्ग ले अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर। दरचूरा ले फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू मन। और सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष और प्रकाश सेन मन।

कार्यक्रम में आप सुनथन संतोष शुक्ला औ संगवारी मन के गाय ए गीत औ ए गीत भर पाती पठोए हवे हमार ए श्रोता संगवारी मन दतरिंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदुमन बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन साकरा भूमिया तिलदा ले मनोज निषाद प्रतिभा निषाद पूर्वी औ खुशांत निषाद पावर हाउस भिलाई जामुल्ले विकास वर्मा खुशी ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान पूजा प्रधान कोटा रायपुरले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन भाटापाराले नारायण यदु पुनिया यदु राकेश आरती यदु हटरी बाजार भाटापाराले मोहम्मद जावेद एकता यदु पूजा यदु रेशमा निषाद सिर्री गातापाराले धनेश्वरी साहू ओम प्रभा साहू बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू चमेली भूमिका साहू मोनिका पूनम साहूमन खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा गजेंद्र साहू चंपेश्वरी साहू औ केयांश साहूमन।

साधना यादव और कविता वासनी के गाए ए गीत ला सुनतन जेकर भर फरमाइश भेजे हवे हमारे श्रोता संगवारी मन। बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, देवरी भट्टापारा ले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरियानामल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता मन, ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौद सारा गांव ले सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, झूलेलाल चौक तिलदा ले हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला, चना गांव ले कोमल शोरी, विष्णु साहू, गैन मरकाम सोहन यादव, नंदलाल मरकाम, सिमगा ले सविता जैन, प्रदीप मोनिका जैन, बीना देवेंद्र आदेश जैन, नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा शारदा दामिनी वर्मा, बेमेतराले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, व्रजेंद्र व्रजकांत सारथी, कलेवाड़ाले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी गीतिका गिन्नी परीखिलेश सोनवानी, करही भदरले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी गिन्नी परी, पलारी ले नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, ईशांत देवांगन और तनुजा देवांगन मन।

0: अब आप मन ला सुनावत हैं भैया लाल हेड़ऊ औ संगवारी मन के गाए ए गीत औ ए गीत बर पाती औ ईमेल पठोए हवे हमार ए श्रोता संगवारी मन। शीतलानगर दुर्गले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर बाजारपरा बेमेतराले भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा शिव मंदिर रोड खैरागढ़ले रविन्द्र अग्रवाल पुष्पलता डॉक्टर झरना प्रेरणा दीक्षा शिक्षा अग्रवाल मन नरेश साहू दुर्गा देवी साहू रोमन गंगेश्वरी साहू मोखेतरा आरंगले कोटा रायपुरले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा कसडोलले सम्मेलाल साहू वैशाली साहू शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा जवाहर नगर दुर्गले आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी विपुल कामड़े गर्रापार बांदा बाजारले गंगाराम साहू सुलोचना साहू राकेश साहू आमा खोडरा रेंगाखारले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया गीत औ सरगम नेताम मन।
1: छनर छनर परी बाजे छनर छनर खनर खनर चूरी हाथ तो कुल कर।

सुर सिंगार कार्यक्रम में अब आपला सुनवावत हन कविता हिरकने के गाय ए गीत जेकर पर हमला फरमाइश पठोए हवे हमर ए श्रोता संगवारी मन। मोती गार्डन भाटापारा मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू कुमार, चिंटू युग कुमार झेरिया, भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडीले सुब्रत चौधरी, लच्छनपुरले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, भाटापारा ले दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, महावीर वार्ड भाटापारा ले अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, कुमारी प्रेरणा और डिम्पी यादव, भाटापारा ले श्याम रतन मूंधड़ा, रचनाकार मूंधड़ा, भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज अल्फैज खान, हजीरुन निशा, बिलहाले शेख नासिर, महजबीन बानो, महारानी चौक भाटापारा ले परस शर्मा, निधि शर्मा, रुचि शर्मा, नित्या शर्मा, भाटापारा ले बबला यादव, रिकी राम यादव, कमलेश्वरी यादव, सरगुजा मेन पाटले सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा आदिबा थापा, भाटापारा ले रामकुमार राउत, अमरिका गणेश, कार्तिक युवराज राउत।

छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी में समाचार, आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में राहत इंदौरी का लिखा ये गीत। संगीत अनु मलिक का है और फिल्म का नाम है करीब।

समीर का लिखा और नदीम श्रवण के संगीत से सजा गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है राज़।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में सुनिए विजयपथ फिल्म का गीत। जमीर काजमी की रचना है और संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर सुनिएगा पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग भूपाली तोड़ी और राग दिन की पुरिया में ख्याल।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे, युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा समस्या देखकर हार मत मानो, साथ ही होगा क्रम खेल चौपाल और ज्ञान सरिता।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया शाम 6:30 पर, चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात जल संरक्षण खातिर परंपरागत स्रोत के सफाई विषय पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल, इसमें सुनिएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के पादप कारिकी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एलिस तिर्की से औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती विषय पर जानकारी। संचालन लव कुमार सिंह का और प्रस्तुति शशि प्रकाश पांडे की होगी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर कलाकार होंगी पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा विजय कुमार कुर्म का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्वरी और राग खमाज़।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें रात 10:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग भूपाली तोड़ी और राग दिन की पुरिया में ख्याल। पहले सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग भूपाली में ये ख्याल। विलंबित गत रूपक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगति कर रहे हैं सुभाष कामंत।

पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग भूपाली तोड़ी में ख्याल अभी आप सुन रहे थे। तबले पर संगति की सुभाष कामंत ने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का राग दिन की पुरिया में ख्याल। तबले पर संगत कर रहे हैं सुभाष कामंत।

की का राग दिन की पुरिया में ख्याल। तबले पर संगति कर रहे थे सुभाष कामंत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में पहले सुनिए मोहरा फिल्म का गीत। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, संगीत विजू शाह का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए घातक फिल्म का गीत। शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाज है, राहत इंदौरी की रचना है और संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:00

0: 15 मिनट होने को है। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.jiovi.in और हमारे न्यूज ऑन IR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
3: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @IRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी

0: परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली

0: कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में डर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत शिवहरी का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए
8: कहिए कहिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

श्रेया घोषाल की आवाज में सुनिए शिवा फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं नितिन रायकुवार ने और संगीत इलैया राजा का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए कोयला फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा के स्थानीय प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ए पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्रिकरणम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूटीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। ये अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमरीका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त 3:11 और ठीक 1 सेकंड मन भावन लेकर देविका हाजिर है। जी हाँ, जहाँ आपके मन के गीत हम आपको सुनवाते हैं। मेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com, fmgoldairdelhi@gmail.com। और मन भावन का आगाज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और उन श्रोताओं के लिए जो ये कहते हैं कि अपनी ही पसंद का गीत या हमारी ही पसंद का गीत, तो ये मेरी पसंद और आपकी पसंद, दोनों की पसंद है।

जी हाँ, फिल्म अमर अकबर एंथोनी का गीत आपने सुना, और हम जो फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं, पहली फरमाइश वो हम पूरी करने जा रहे हैं मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर रमनदीप, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, इन्होंने गाइड फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

मनभावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो है फिल्म अनुराग से गीत की फरमाइश की है, और ये हमें भेजा है गणेशपुर उत्तर प्रदेश से F फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज शेख और बीबी मुस्कान। तो लीजिए, ये रही आपका पसंद का गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

3:31 मन भवन सुन रहे हैं आप और चैनल है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। और कुछ होता है जिनके नाम हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। चुरू राजस्थान से भवर सिंह, मीना, राजन, वानी, जगदीश मंडल, अरविंद खगड़िया और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। गांव ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, जलदीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरराल सिंह, अविराज सिंह। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार डूम है, संदीप जाडव है, टुकटुक जाडव है और प्रभा रानी जयपुरिया है। और घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, बिहार स्टेट डुमराव से आसमान सारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, राजेश कुमार चौहान है, जालंधर से हमें सुन रहे हैं, सनाबाद से शेख मूसा मोहसिन है, वो भी हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका FM गोल्ड से जुड़ने के लिए। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं पूजा दास की, और उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, फिल्म है छोटी सी बात।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मन भावन, और मन भावन की अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वशिष्ठ पार्क से, जो हमें भेजी है मीता विश्वास ने, और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म है झुके आसमान।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मन भावन और बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए उनके नाम जरूर ले लेते हैं। हम तक जो श्रोता ने हमें भेजा है एक संदेश कि धूप में भी सुरीला, आंधियों में भी मधुर, ये रेडियो है जो हर पल मधुर। कभी क्रिकेटर का शोर, कभी गानों की बहार, ये एफएम गोल्ड है जो लाए है खुशियों की बहार। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और कहते हैं प्रोग्राम के सभी नगमे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने ही हमें एक और मेल भेजी है कि हमारा नंबर कब आएगा। तो देखिए, ऐसा है, नंबर यहाँ किसी का नहीं होता। जैसे जैसे हमारे पास मेल आती है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि जो गीत हम आपके लिए प्ले कर सकते हैं हम ज़रूर लाते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भारत मकर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक जालंधर से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आजाद नगर हरिद्वार से लिखते हैं, कच्छ गुजरात से, गंगा वनकर, गोविंद विकास, प्रीति जूली, गीता महिमा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक, साथ है मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, निहारिका और वंश बट्टा, और ये हमें गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान है। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो है सतीश अनेजा की, और इन्होंने फिल्म याराना के इस गीत की फरमाइश की है।

अगली मेल जो हम लेने जा रहे हैं वो हमें भेजी है भारत भूषण ने, और कहते हैं कि आज मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर एक ऐसी गीत की फरमाइश प्रेषित कर रहा हूँ जो व्यक्तित्व से मेरे बहुत मेल खाता है। तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, और जिस गीत की आपने फरमाइश की है वो गीत वैसे ही बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है आपके व्यक्तित्व से नहीं, बहुत सारे लोगों के व्यक्तित्व से ये मेल खाता है। तो गीत है फिल्म अनाड़ी का, ये

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण

का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

सावन की आखिरी फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है हॉटमेल, प्रोग्राम तो हॉटमेल नहीं है, प्रोग्राम मनभावन है दोस्त, और आपने अपना नाम लिखा है शेरवानी डंड गुंडवारा आफ्ताब अंसारी हैं आप, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, गीत है ना झटको जुल से पानी, जी हाँ फिल्म है शहनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुँच चुके हैं। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में

0: भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये अमेरिका के व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The meeting of BJP Legislature Party in West Bengal is underway in Kolkata to elect its leader and the chief minister. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah is present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on 11th of this month to mark 75 years of inauguration of the restored

जी हाँ, फिल्म बेखुदी का गीत आपने सुना कुमार सानू और आशा जी की आवाज में। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अगला गीत फिल्म झुमरू से किशोर कुमार की आवाज।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो भौजी, मौजी बोलो भौजी, मौजी बोलो
0: बाबू आना, सुनते जाना।
1: धत धत, महंगा

0: ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा
0: तू जा जा, ए जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

0: आपको बता दें कि थोड़ी सी देर में होंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार, और उसके बाद 4:30 पे होगा परिक्रमा, 5 बजे होंगे समाचार।
1: ले लो जंगल की बूटी, खाके पत्थर भी तोड़ना।

0: सिपाही पायनियर की 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं जो पुरुषों के लिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए 2 सलाहकार विशेषज्ञ के पदों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक विवरण के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट nmcg.nic.in। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में तथा DCOs में प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण के आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए विधिवत माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन विधिवत माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, पद का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन और चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों आदि के लिए देखिए वेबसाइट census.gov.in। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सक्रिय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों में एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोई भी अंतिम तिथि नहीं है और आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं। आवेदनों पर समय समय पर विचार किया जाएगा। विज्ञापन के प्रथम चरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे वो अगले चरण के लिए विचार किए जाएंगे। अधिक विवरण के लिए, विस्तार से जानने के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट www.nitkkr.ac.in। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन रिक्तियों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक डी वेतन स्तर 12, कुल पद हैं 12, जिनमें से 7 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सी वर्ग के लिए कुल 141 रिक्तियां उपलब्ध हैं और इनमें से 59 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और EWS वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं NIC की वेबसाइट पर, जिसका पता है recruitment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन परिक्रमा में। श्रोताओं, हम मई के शुरुआती दिनों में हैं और ये समय हमें बीते हुए दिनों पर विचार और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने का मौका देता है। ये मई महीना कई अवसरों की भी शुरुआत है, इसलिए जिन कामों को आप पिछले कई दिनों से टालते आ रहे हैं उन्हें अब पूरा करने की योजना बना सकते हैं। और आपको बता दें कि आज 2 बहुत खास दिन भी हैं जिनका इस्तेमाल आप एक अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
4: नमस्कार सरफिरोजी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड सरफिरोजी। टुडे, वेल, सरफिरोजी वाज टॉकिंग अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन, आई थिंक। सो प्रोक्रास्ट

0: destination. It's to minimize distractions basically and manage time actively. You should complete tasks efficiently, define clear objectives, break large projects into smaller steps, and then complete your tasks.
1: Bilkul.
0: Exactly. We can do this, and we listeners, for you, for the program, we will first start with the selection of news. Our discussion segment, Dateline India, Sir Firozi was talking about that as well. We have two topics which we will discuss in great depth, and reports, capsules and tributes will be there at the end of the program. First, we are beginning with the news headlines.
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक.
0: DRDO and Indian Air Force successfully conduct maiden flight trial of indigenous Tara glide weapon.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया.
0: US Court of International Trade declares Trump administration's 10% universal tariff levied on imports from India and other countries illegal.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हों.
0: एंड इन IPL क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स टू टेक ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स इन दिल्ली दिस इवनिंग. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया. टॉपिक नंबर वन, इट्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, which is celebrated to honor the essence of humanity and acknowledge those individuals, especially Red Cross volunteers, who contribute to their communities and continue to save lives worldwide. So the idea for World Red Cross and Red Crescent Day, it came about after the First World War, when an annual action that could take hold in the whole world, that would be a major contribution to peace, and it was discussed at 14th International Conference of the Red Cross. So 8th of May was eventually chosen because it is the anniversary of the birth of the founder of the International Committee of the Red Cross, Henri Dunant. The first International Red Cross Day, as it used to be known then, was celebrated on 8th May 1948, this year, 1948. So the official title of the day, it changed over time and became known as World Red Cross and Red Crescent Day in 1984, Sir
1: Firozi. बिल्कुल शगुन. और विश्व युद्ध के अलावा भी मानव ये सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक पल आए जब विनाश और पीड़ा ने मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराया, पर इन्हीं हालात के बीच करुणा, सेवा और सह अस्तित्व की एक ज्योति भी जली जिसने मानवता को नई दिशा दी. विश्व रेड क्रॉस दिवस इसी ज्योति का उत्सव है. और बात करें विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 की थीम की, तो इस वर्ष का विषय है मानवता में एकता, यानी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी.
0: राइट, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी. इट इज एक्चुअली टू इंस्पायर, टू इनिशिएट एंड टू एनकरेज ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज अंडर ऑल टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस. So programs conducted by the Red Cross Society can be broadly categorized into four parts, which includes the promotion of humanitarian principles and values. Secondly, disaster response. Third, disaster preparedness. And fourth, health and care. The Red Cross Society is based on seven principles, namely humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, unity and universality.
1: बिल्कुल शगुन. और मैं ऐसा मानती हूँ कि न सिर्फ किसी संगठन बल्कि जो पूरी दुनिया है, जो हमारा समाज है, उस पूरे समाज का ही आधार मानवता, निष्पक्षता और एकता होना चाहिए. और भारत में रेड क्रॉस की भूमिका की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में हुई. औपनिवेशिक काल से लेकर आज़ादी मिलने के बाद तक इस संस्था ने निरंतर मानव सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा को जीवित रखा है. देश के विभाजन जैसे त्रासदी के दौर में भी लाखों विस्थापितों को राहत दी, इन्हें पुनर्वास प्रदान किया और युद्ध काल में घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की. आज भारत में रेड क्रॉस का सशक्त और विस्तृत नेटवर्क राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर तक फैला हुआ है. हजारों समर्पित स्वयंसेवक सेवा और संवेदना की भावना से प्रेरित होकर निरंतर समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं.
0: सो फिलैंथ्रोपी, दिस हैज बीन कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन वैल्यू इन इंडियन ट्रेडिशन. द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैज बीन सर्विंग पीपल फॉर मोर देन 100 ईयर्स. इट हैज शोन इट्स कमिटमेंट थ्रू रिलीफ वर्क ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स, ऑल्सो हेल्थ इमरजेंसीज. एंड वी शुड नोट हियर दैट द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज मीटिंग अबाउट 10%

0: 5% of India's blood requirements through more than 100 blood donation centres and mobile campaigns across the country. The Indian Red Cross Society is playing an excellent role by safely collecting blood for those in need and promoting the culture of voluntary blood donation. Now we'll move on to the second dateline, the second topic. So every year on May 8, the world also observes World Thalassemia Day. This thereby raises awareness about this inherited blood disorder. It is dedicated to thalassemia patients who are battling the disease and remembers those who passed away. The day serves as a crucial platform to emphasize the importance of disease prevention, raise awareness, sensitize stakeholders as well, promote the early detection, and also to ensure quality care for those affected by thalassemia. The theme for this year's celebration, let's tell our listeners about the theme, Sir Firozi. Hidden No More, Finding the Undiagnosed, Supporting the Unseen. How great. This powerful theme highlights the millions of people, especially carriers and patients, who remain invisible to the healthcare system until a crisis strikes.
1: श्रोताओं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है। इस रोग में शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान और कई दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंभीर रोगियों को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है।
0: जी सर फिरोजी, विल एक्सप्लेन। सो थैलेसीमिया इज अमंग द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स एंड दिस affects thousands of children and families across India every year, and this makes awareness about thalassemia extremely crucial, especially among young adults and couples, so that informed healthcare decisions can help reduce the number of children born with the disorder and also lessen the growing burden on families and the healthcare system, right?
1: बिल्कुल शगुन, और आपने बात की informed healthcare decisions की, तो आज जब मैं thalassemia पर research कर रही थी तो उस वक्त मैंने कई articles पढ़े जिनमें बताया गया है कि कई स्टडीज में सामने आया है कि अब गर्भावस्था के दौरान यानी प्रीनेटल टेस्ट में ही थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन से जुड़ी दूसरी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी काफी शोध होना बाकी है, लेकिन ये इस बीमारी को कम करने के लिए हम सभी के लिए एक उम्मीद की तरह है। और कुछ और प्रयासों की बात करें शगुन, तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक की सुविधाएं, डे केयर सेंटर, दवाएं, लैब सेवाएं और मानव संसाधन के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता शामिल है।
0: ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इन इंडिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज एंड अदर वेरियंट हीमोग्लोबिन हैव बीन शेयर्ड टू असिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज, and this includes thalassemia. So, the guidelines detail the strategies for management of thalassemia disease, including thalassemia major blood transfusion therapy with packed red blood cell. Other one is iron chelation for iron overload, monitoring and management of complication. And this iron chelation that I talked about, this is for especially for iron overload. The other one is psychological support as well, and non-transfusion dependent thalassemia.
1: और स्वास्थ्य मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत पात्र मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सीआईएल के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजना देश भर में फैले 17 सूचीबद्ध अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा उपलब्ध कराती है। श्रोताओं, एक बार आपको फिर बता दें कि थैलेसीमिया छुआछूत या फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये माता पिता से बच्चों में डिफेक्टिव जीन के जरिए आती है। दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी शगुन कहीं ना कहीं से लेकर जागरूकता की अब भी काफी कमी है। तो आज फिर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बीमारी के मरीजों के साथ भेदभाव से बचे और जिस भी स्तर पर मुमकिन हो इन्हें समाज में शामिल करें।
0: So now we'll move on. The announcement first that we're going to make is about our series People's Padma on Akashwani. So in our upcoming episode, listeners, we speak to Dr. Ramamurthy Sridhar, a pioneer in radio broadcasting in India. He will be honored with the prestigious Padma Shri. And to

0: Listen to the conversation. Tune in to 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
1: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और हम सभी को इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर सुनना
0: Definitely
1: चाहिए
0: listeners should listen into it.
1: और श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है. कहां से शुरू कर रहे हैं शगुन?
0: यस सर फिरोजी, विल हेड फर्स्ट टू गैंगटॉक. यूनेस्को हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टू डॉक्यूमेंट द इंडिजिनस इंजीनियरिंग हेरिटेज ऑफ द केन ब्रिजेस. And this is also known as Ru Soam in the Khangchenjoga Biosphere Reserve in Sikkim. We have details, more details on this from our correspondent.
2: The Ru Soams are crafted by the Lepcha community from locally available materials such as bamboo, cane and wood. The engineering practice reflects a sophisticated understanding of ecological balance and structural resilience. The initiative aims to explore how these time-tested practices can inform contemporary approaches to climate adaptation and disaster risk reduction. It will also bring this engineering approach into global scientific and environmental discussions, supporting its integration into contemporary transdisciplinary knowledge cooperation. The Lepcha community holds a deep cultural and spiritual connection to nature. Their bridge-building practices reflect indigenous community needs and understanding of diverse environments and structural mechanics. Led by skilled community members who transmit knowledge orally across generations, these practices reflect careful stewardship of natural resources and harmonious coexistence between human and nature. The resilience of these structures was notably demonstrated during the glacial lake outburst flood of October 2023, when several cane bridges withstood the impact of the event and continued to provide critical connectivity to remote areas. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
1: भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक और प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आज श्रद्धा और स्वाभिमान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली 11 मई की यात्रा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 गौरवशाली वर्ष इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को ऐतिहासिक बना रहे हैं. एक रिपोर्ट.
3: सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की उस सभ्यतागत अजेयता का प्रमाण है जो बार बार विनाश के बाद भी अपनी आस्था की शक्ति पर फिर से खड़ी हुई है. इस नवनिर्माण की नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी. 12 नवंबर 1947 दीपावली का वह ऐतिहासिक दिन था जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया था और समुद्र के किनारे हाथ में जल लेकर इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया था. सरदार पटेल जी का मानना था कि सोमनाथ की बहाली केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि भारत के खोए हुए सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी है. जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प से कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित यह मंदिर आखिरकार 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया गया. आजादी के 75 वर्षों के बाद जब भारत अपना अमृत काल मना रहा है तब सोमनाथ मंदिर भी एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है. आगामी 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाला स्वाभिमान पर्व इसी विरासत और विकास के समन्वय का उत्सव है. इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभास पाटन पहुंच रहे हैं. दिल्ली से आए तीर्थयात्रियों का दल यहां की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत है. सरदार पटेल के संकल्प से शुरू हुआ यह सफर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक और भव्य स्वरूप ले चुका है. सोमनाथ की यह अजेयता सिद्ध करती है कि हमलावर मंदिर की दीवारें तोड़ सकते हैं लेकिन राष्ट्र की अटूट श्रद्धा को कभी डिगा नहीं सकते. यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी विरासत और स्वाभिमान को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड.
0: Now we'll focus on Goa. So commuters and tourists in Goa may soon trade road traffic for river breezes as the state advances its ambitious water metro project. Following a detailed feasibility study, officials are preparing to seek central assistance to transform the coastal state's aquatic transit landscape. A report.
4: The River Navigation Minister Subhash Phal Desai has announced that the state government aims to procure approximately 87 vessels

0: upon my door.
1: So the Rock and Roll Hall of Fame describes him as perhaps the first ever rock star.
0: And I said, hello, Satan, I believe it's time.
2: आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देशपांडे की, जो मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये कवि अनिल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। सामाजिक शिक्षा

आज जयंती है गिरजा देवी की, जो भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इनकी एक कजरी बरसन लगी काफी प्रसिद्ध हुई थी। गायकी के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 1972 में इन्हें पद्मश्री, साल 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

आज जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। इन्हें खासकर इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और पारंपरिक भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया। इनके प्रसिद्ध गीतों में हम्मा हम्मा भी शामिल है, जिसे बाद में फिल्म बॉम्बे में भी इस्तेमाल किया गया।

0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे अहेड।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे

0: हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये बंसीपुर, ढोढ़ा गांव, घासीडीह, बोड़ाझरिया, दांतीढाप, कंडराजा, चोरकी पानी, डांड केसरा, परपटिया, लोटा ढोड़ी, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 94 है। ये आमगांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुमकेला, डोंगा भवना, गलीमार, सारसमार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरीकादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खमहार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वनमंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरीपानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। रात 9:30 पर सुनिएगा करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा समस्या देखकर हार मत मानो। साथ ही सुनिएगा खेल चौपाल और ज्ञान सरिता। 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा जल संरक्षण खातिर परंपरागत स्रोत के साफ सफाई विषय पर आज की बात में चर्चा। और साथ ही सुनिएगा हेलो चौपाल। विषय होगा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एलिश तिर्की, प्रमुख वैज्ञानिक पादप कार्यकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा विजय कुमार कुर्म का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री और राग खमाज में धुन। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

कल रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती सुनिएगा कल रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कल रात 10:00 सुनिएगा राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कवलजीत से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगी प्रीति यादव, प्रस्तुति होगी रमाशंकर की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
0: मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है।
1: आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ उपस्थित है आपके दो प्रिय मित्र, यानी कि मैं सूर्य तिवारी
0: और मैं सौरव शर्मा। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। सूर्य, कभी कभी ऐसा लगता है

0: कि जैसे कि हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं और वैसे ही समस्या सामने खड़ी हो जाती है।
1: सही कहा सौरभ, और फिर हम सोचते हैं अभी नहीं थोड़ा बाद में शुरू करेंगे।
0: साथियों, और यही थोड़ा बाद में कई बार बहुत लंबा हो जाता है।
1: सच कहा सौरभ।
0: लेकिन जब समस्या बहुत बड़ी लगने लगे तब हिम्मत सच में टूटने लगती है।
1: हाँ दोस्तों, और ऐसे समय में एक छोटा सा सवाल बहुत काम आता है, क्या समस्या सच में इतनी बड़ी है या हमारा डर उसे बड़ा बना रहा है।
0: सच कहूँ तो सूर्या, समस्या ज्यादा कई बार हमारे डर ज्यादा बड़ा होता है।
1: साथियों जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी छोटी सी बात को मन में इतना बड़ा बना लिया कि शुरुआत ही नहीं कर पाए।
0: शायद आप में से कई लोग ने ये जरूर किया होगा, मैंने भी किया है।
1: और यही वजह है कि हम शुरुआत में ही हार मान लेते हैं,
0: जबकि अगर थोड़ा ठहर कर सोचें तो अक्सर रास्ता निकल ही जाता है।
1: बिल्कुल सौरभ, बस थोड़ा धैर्य और सही सोच चाहिए होती है।
0: लेकिन सूर्य, हर बार हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं होता है।
1: बात तो सही है सौरभ, और ऐसे समय में हमें किसी ऐसे उदाहरण की जरूरत होती है जो हमें अंदर से हिम्मत दे।
0: और ऐसे में एक नाम मुझे तुरंत याद आ जाता है।
1: अच्छा सौरभ, हमें भी बताओ वो नाम।
0: दशरथ मांझी।
1: ओ माउंटेन मैन।
0: हाँ वही दोस्तों, उनकी कहानी सच में सोच बदल देती है।
1: दोस्तों दशरथ मांझी एक साधारण मजदूर थे। उनके गांव में एक बड़ा पहाड़ था जो लोगों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था,
0: और उस पहाड़ की वजह से लोगों को कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।
1: हाँ, और यही समस्या उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया।
0: जब उनकी पत्नी फगुनी देवी घायल हुई तब उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उन्हें अपनी पत्नी को खो दिया।
1: साथियों, कई लोग इस स्थिति में टूट जाते, लेकिन दशरथ मांझी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि अब ये पहाड़ किसी और की मजबूरी नहीं बनेगा,
0: और फिर उन्होंने अकेले ही पहाड़ काटना शुरू कर दिया।
1: ना कोई बड़ी मशीन, ना कोई खास साधन, बस एक हथौड़ा और छेनी।
0: लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे यह काम असंभव है, ये नहीं हो पाएगा।
1: साथियों जरा सोचिए, अगर लोग हमें बार बार कहे कि तुमसे नहीं होगा तो क्या हम फिर भी डटे रह पाएंगे।
0: लेकिन दोस्तों दशरथ मांझी रुके नहीं, दिन रात मेहनत करते रहे।
1: गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, 22 साल तक लगातार लगे रहे,
0: और आखिरकार पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया।
1: यानी जो समस्या सबसे बड़ी लग रही थी उनके हौसलों ने उस समस्या को ही हरा दिया।
0: सूर्य, हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं
1: और संघर्ष से बचना चाहते हैं, जबकि जो चीज मेहनत से मिलती है वही सबसे ज्यादा टिकती है।
0: मतलब संघर्ष जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है सौरभ।
0: जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिर में चलना सीख ही जाता है।
1: साथियों, क्या हम भी गिरने के डर से रुक जाते हैं या हम कोशिश करते रहते हैं, यही हमारे सबसे बड़ी परीक्षा होती है।
0: हम गिरने से डरते हैं जबकि गिरना ही हमें मजबूत बनाता है।
1: लेकिन सौरभ, जब बार बार असफलता मिले तब
0: समझना चाहिए सूर्या कि असफलता हमें सुधारने आई है, रोकने नहीं। मतलब हर असफलता एक सीख है और वही सीख हमें आगे बढ़ाती है।
1: दोस्तों जरा सोचिए, याद कीजिए आपकी पिछली असफलता ने आपको क्या सिखाया, शायद वही आपकी अगली सफलता की शुरुआत हो।
0: तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो उससे भागना नहीं, उसका सामना करना,
1: क्योंकि समस्या हमें नहीं रोकती, हमारा डर हमें रोकता है,
0: और जो डर को हरा के आगे बढ़ता है वही सफल होता है।
1: असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
0: जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
1: कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: साथियों, एक समय था जब एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज हर कोई खेलने को खराब नहीं बल्कि दिनचर्या का जरूरी भाग समझता है।
3: तुमने सही कहा सौरभ। और हर आयु वर्ग के लोग खेलों से जुड़े समाचार और जानकारी जानना पसंद करते हैं। इसलिए तो साथियों, हम आपके लिए लाते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम खेल चौपाल।
2: तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम खेल चौपाल की ओर।

0: पहली खबर आ रही है यहां से। गुरुचरण होरा बने ऑल इंडिया टेनिस संघ के संयुक्त सचिव।
1: 21 वर्षीय कुलदीप ने पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा।
0: वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा।
1: थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम को चौथी बार मिला ब्रॉन्ज मेडल।
0: जिम्बाब्वे से पहली बार द्विपक्षीय सीरीज खेलेगा भारत।
1: महिला रग्बी में छोटी गेंद का होगा इस्तेमाल।
0: लगातार 5 मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने सिनर। अब खबरें विस्तार से।
1: रायपुर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर सुरिंदर गोयल ने परिणाम घोषित किए। इसमें चिंतन पारी को अध्यक्ष और सुंदर अय्यर को महासचिव चुना गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को आईटा में संयुक्त सचिव पश्चिम की जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अहम पद मिलने को प्रदेश के टेनिस और खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ के टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूर्नामेंट आयोजन और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
0: भुवनेश्वर कुमार के कलिंग स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुषों के पोल वॉल्ट इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 21 वर्षीय भारतीय एथलीट कुलदीप कुमार ने 5.41 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने देव मीना के 5.40 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
1: इंग्लैंड में जून जुलाई में होने वाले वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस 15 सदस्यीय टीम में विकेट कीपर यस्तिका भाटिया और स्पिनर राधा यादव की वापसी हुई है। वहीं वीमेंस प्रीमियर लीग में रफ्तार का जादू दिखाने वाली अनकैप्ड पेसर नंदिनी शर्मा को पहली बार इंटरनेशनल टीम में चुना गया है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ 28 मई 30 मई 2 जून को 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। वर्ल्ड कप में भारत के अभियान की शुरुआत 14 जून को बर्मिंघम में चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होगी। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स पर खेला जाएगा। भारत मौजूदा वनडे चैंपियन है, लेकिन उसे पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तलाश है।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम का थॉमस कप खिताब दोबारा जीतने का सपना सेमीफाइनल में टूट गया। भारत को एक तरफा मुकाबले में फ्रांस के हाथों 0-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। यह भारत का 1952, 1955 और 1979 के बाद चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। फ्रांस इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाला डेनमार्क के बाद दूसरा यूरोपियन देश बन गया है।
1: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमें पहली बार भिड़ेंगी। अक्टूबर में जिम्बाब्वे की टीम भारत आएगी। दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। T20 मुकाबले 16, 18 और 20 अक्टूबर को रायपुर में होंगे, जबकि वनडे 23, 25 और 28 अक्टूबर को बड़ौदा में खेले जाएंगे। यह जिम्बाब्वे महिला टीम का पहला भारत दौरा होगा। इनके अलावा भारत ए महिला टीम ऑस्ट्रेलिया ए और इंग्लैंड ए के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी।
0: आने वाले ग्लोबल सीरीज टूर्नामेंट में साइज 4.5 की नई रग्बी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। यह गेंद सामान्य साइज 5 की गेंद से करीब 3% छोटी होगी। वर्ल्ड रग्बी का मानना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के हाथ 10-15% छोटे होते हैं। ऐसे में महिला खिलाड़ियों को छोटी गेंद पकड़ने में आसानी होगी। बहरहाल इंग्लैंड की रग्बी खिलाड़ी जोई हैरिसन ने महिलाओं के टूर्नामेंट में छोटी गेंद का इस्तेमाल करने के निर्णय को अब तक का सबसे खराब फैसला बताया है।
1: दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता। फाइनल में सिनर ने वर्ल्ड नंबर 3 ज्वेरेव को 6-1, 6-2 से मात दी। यह सिनर की लगातार 23वीं जीत रही। इसके साथ ही वे लगातार 5 मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। आज का खेल समाचार यहीं तक था। खेल चौपाल समाप्त।

0: क्या हुआ सूर्या, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, पर कमरे के अंदर तो उतनी गर्मी नहीं है।
1: अरे वो मैं तेज तेज चलकर आ रहा था तो थककर पसीना आ रहा है। लेकिन कमाल की बात है ना सौरभ, कि बचपन में दिन भर भागा दौड़ा करते थे तब भी थकते नहीं थे, और आज तेज चलते ही थक जाते हैं।
0: स्वाभाविक सी बात है सूर्या, तब हम हर दिन खेल कूद करते थे तो शरीर को थकान क्या होती है वो पता ही नहीं था। लेकिन अब दिन भर बैठकर काम करना हो और फिर कहीं जाना हो तो गाड़ी लेकर निकल पड़े।
1: बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सौरभ। वैसे साथियों, अगर मैं आपसे भी पूछूं, क्या आप आज भी दूरी तक चलते हैं जितनी पहले चला करते थे? देखना, आप भी अपने मन से उत्तर ना ही आएगा। डॉक्टर तो कहते हैं कि दिन भर में हर व्यक्ति को 10,000 कदम चलना चाहिए, पर यहाँ 100 भी सही से पूरे हो जाए वही बड़ी बात है।
0: साथियों, मैं आपसे इसी विषय पर एक वाक्या साझा करना चाहूँगा। दरअसल मैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो एक बुजुर्ग विदेशी भी उसी मेट्रो में सफ़र कर रहे थे। अब कहीं भी पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 मेट्रो स्टेशन से ट्रेन बदलकर सफ़र करना रहता है, ठीक है। तो मैं देखता कि लोग एस्केलेटर पर खड़े होकर ऊपर जा रहे हैं, वहीं जो बुजुर्ग विदेशी हैं थे वो अकेले सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने सभी स्टेशन पर सीढ़ियों का ही उपयोग किया, जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गया।
1: सच में सौरभ, ये बात हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है ना कि
0: ना चलने की आदत, बताओ।
1: हाँ, भारतीय आदत हम भारतीयों में कितनी बड़ी हो चुकी है।
0: सही बात है।
1: वैसे सौरभ, चलना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मनुष्यों के लिए जरूरी है।
0: तुमने सही कहा सूर्या। तो चलो आज हम क्रम ज्ञान सरिता में चलने पर ही हमारे साथियों के साथ बातें साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सूर्या, जब भी पैदल चलने की यात्राओं की चर्चा होती है ना, तब मुझे हमेशा लगता है कि इंसान के कदम केवल दूरी ही तय नहीं करते, कई बार इतिहास रच देते हैं।
1: बिल्कुल सौरभ, और हमारे देश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी की दांडी यात्रा है। 1930 में शुरू हुई वो यात्रा केवल साबरमती से दांडी तक पहुंचने का सफर नहीं थी, वो लोगों के भीतर चेतना जगाने की यात्रा थी।
0: सही कहा सूर्या। साथियों, कईयों किलोमीटर की उस पद यात्रा में गांधी जी गांव गांव रुकते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे। शायद यही कारण था कि लोग उनसे जुड़ते चले गए।
1: और सोचो सौरभ, आज जहां कुछ कदम पैदल चलने में भी लोग सुविधा ढूंढते हैं, वहीं उस समय हजारों लोग बिना किसी संसाधन के सिर्फ एक विचार के साथ चल पड़े थे,
0: क्योंकि उस यात्रा में थकान से ज्यादा विश्वास था।
1: मुझे तो हमेशा लगता है कि गांधी जी जानते थे लोग भाषण कम याद रखते हैं, लेकिन साथ चला हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता।
0: वाह, बहुत सुंदर बात कही सूर्या तुमने, और शायद यही कारण है कि उनके वो कदम आज भी समय के पन्नों में सुनाई देते हैं। साथियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये अगला गीत।

0: साथियों, जब हम बचपन में चार कदम चलना शुरू करते हैं तब सबसे ज्यादा खुशी माँ को ही होती है, क्योंकि वो जानती है कि इन चार कदम चलवाने के लिए उन्होंने हमारे पीछे कितनी मेहनत करी है।
1: तुमने सही कहा सूर्या। वैसे आम तौर पर बच्चे 18 महीने के अंदर लड़खड़ाते ही सही लेकिन चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी माताजी बताती हैं कि मैं 2.5-3 साल का होने के बाद भी चलना नहीं सीख पाया था। मेरे ना चल पाने से मेरे घर के बहुत से लोग सभी चिंतित रहते थे और फिर रहते थे आखिर में मैं क्योंकि कब चल पाऊँगा। लेकिन मेरी माँ को भरोसा था इसलिए वो मुझे चलने के लिए प्रेरित करती थी। वो क्या करती थी कि खाने की चीज़ों को थोड़ा दूर और ऊंचा रख देती थी ताकि मैं लालच में ही सही लेकिन खुद से कोशिश करूँ, और परिणाम स्वरूप ये तरीका काम भी किया।
0: सौरभ, तुम्हारी इस बात से मुझे जीवन से संबंधित एक बात मन में आई कि ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हम रुक से जाते हैं, जीवन में क्या करें क्या ना करें इसकी उलझन में खुद की काबिलियत पर संशय करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई हम पर वैसा ही विश्वास जताए जैसा कि एक माँ अपने बच्चे पर जताती है, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति चाहे कितनी विपत्ति आ जाए निडर चलते रहेगा।
1: तुमने 100% सही कहा सूर्या। साथियों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर भी लगातार चल रही है। तो जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ निरंतर गतिशील है, फिर हम कैसे रुक सकते हैं?
0: साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि चलते रहना ही जीवन की पहचान है, रुक जाना तो बस थकान है।

0: सौरभ, एक बात मैंने पिछले कुछ वर्षों में महसूस की है। आज इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं में है, लेकिन शायद पहले से कई ज्यादा थका हुआ भी।
1: सही कहा तुमने सूर्या। और विडंबना देखिए, जिस शरीर को गति के लिए बनाया गया था, आज वही घंटों एक ही जगह बैठा रह जाता है।
0: साथियों, शायद यही कारण है कि डॉक्टर बार बार पैदल चलने की सलाह देते हैं, क्योंकि चलना केवल शरीर को सक्रिय नहीं रखता, मन को भी हल्का करता है।
1: हाँ साथियों, और वैज्ञानिकों का मानना भी है कि नियमित रूप से चलने और तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और सोचने की क्षमता भी सकारात्मक बनी रहती है।
0: शायद इसीलिए पुराने लोग सैर को आदत नहीं, जीवनचर्या कहते थे, क्योंकि कई बार खुली हवा में कुछ देर शांत चल लेना उन उलझनों को भी सुलझा देता है जिन्हें बैठकर घंटों सोचने पर भी समझ नहीं पाते।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही सूर्या तुमने। तो चलिए साथियों, इसी के साथ सुनते हैं ये अगला गीत।

0: सूर्या, हम अक्सर चलने को सिर्फ पैरों से जोड़कर देखते हैं ना, लेकिन जीवन में कई बार इसमें कहीं बड़ा अर्थ सिखा देता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके लिए एक कदम चलना भी आसान नहीं होता, फिर भी उनका आत्मविश्वास कभी रुकता नहीं है।
0: साथियों, हमने ऐसे कई दिव्यांग खिलाड़ियों और कलाकारों को देखा है जिन्होंने अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान बनने नहीं दिया। शारीरिक कठिनाई होते हुए भी उन्होंने जिस तरह जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाया, वो वास्तव में प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने, और शायद वही समझ आता है कि गति केवल शरीर की नहीं होती, इच्छा शक्ति की भी होती है।
0: सही कहा सूर्या, कई बार जिन लोगों के कदम धीमे होते हैं उनका हौसला सबसे आगे निकल जाता है।
1: इसलिए हमें अपने स्वस्थ शरीर के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए और उन लोगों के संघर्ष को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए जो चुनौतियों के बीच भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: क्योंकि जीवन में आगे ही वही आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से बड़ा बनना सीख लेता है।

0: सूर्या, गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है ऐसा तुम अभी देख रहे हो, और बाहर लू भी चल रही है। तो थोड़ा जो अपने को सहा मतलब जितनी भी सेफ्टी लेके चलनी है वो सब करना है, और कोशिश करें कि पानी पिए, और जो पीक आवर्स होते हैं 2 बजे 3 बजे उस बीच में ना निकलें, और इसी तरह हम लोग क्या कि लू से बच जाएंगे। साथियों, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। इसी के साथ आपके मित्र सौरभ शर्मा को
1: और मुझे यानी सूर्या तिवारी को दीजिए इजाजत।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।

0: और कौन आएंगे?
1: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
2: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
3: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
4: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के होइस बिहाव। देशभर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन, ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली 1-2 जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सबो जिला में सामूहिक विवाह के आयोजन करेगी। ये प्रदेश व्यापी आयोजन में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन उनकर अपन अपन धर्म रीति रिवाज ले बिहा होइस। एमा हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष पिछड़ा जनजाति के जोड़ा घलो शामिल रहीन। वे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शक्ति जिला में 70 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 72 जोड़ा के बिहाव कराएगी। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कार्यक्रम में विशेष रूप ले 4 बैगा आदिवासी परिवार के 2 जोड़ा आकर्षण के केंद्र रहीन। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा बतइन कि विभाग ह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ला बढ़ावा दे के संग जिला ला बाल विवाह मुक्त बनाए के दिशा में सरलक कार्य करत हे। आकाशवाणी हा राष्ट्र के प्रति अपन विशेष सेवा के 90 बछर पूरे के मौका में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन के आयोजन करीस। करीबन 3.5 किलोमीटर मैराथन के शुरुआत आकाशवाणी भवन ले होइस। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले गुजरत आकाशवाणी भवन में सिराइस। मैराथन पूरा करैया सबो प्रतिभागी मल्ला पदक प्रदान करेगीस। उन्हें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ऊपर के 3 प्रतिभागी मल्ला ट्रॉफी प्रदान करेगीस। बता दें कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है ये मैराथन ला रवाना करीन। ये मौका में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है बताइन कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के देश के सेवा में करे गए योगदान ला दर्शाते।

0: देशभर के संग छत्तीसगढ़ मा काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन होही। ए दौरान कोर्ट मा लंबित मामला मन के आपसी सहमति ले निपटारा करे जाही। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर मा घलो विशेष लोक अदालत मा लंबित मामला मन के सुनवाई होही। पक्षकार मन ला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत मा शामिल करे बर जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट मा 21 मई तक गूगल फॉर्म मा देना होही। ज्यादा जानकारी बर बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ले संपर्क करे जा सकत हे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हा अपन अधिकारी कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता मा केंद्र सरकार जैसन 2% बढ़ोतरी के ऐलान करे हे। मुख्य अभियंता के आदेश ले अब कर्मचारी मन ला 60% डीए दे जाही। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। उन्हें मई के वेतन ले कर्मचारी मन ला नवा दर ले भुगतान करे जाही। जांजगीर चांपा जिला मा धान खरीदी मा बड़े गड़बड़ी उजागर हुए है। जिला के 3 धान खरीदी केंद्र किरीत कड़ारी और बिर्रा मा करीबन 4,700 कुंटल धान गबन करेगीस, जेखर कीमत 1,29,00,000 रुपया बताए जावत हे। मामला अगुवाए के बाद नवागढ़ बिर्रा और बाराद्वार थाना मा 7 कर्मचारी मन के खिलाफ केस दर्ज करे गए है। एमा संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल घलो शामिल है। ये सबो आरोपी मन हा मामला अगुवाए के बाद फरार बताए जावत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन मा लापरवाही बरतैया 30 शिक्षक मन के खिलाफ बड़े कार्यवाही करे हे। मंडल के आदेश मा एखर ले जुड़े शिक्षक मन ला अवैया 3 बर आने आने कारज ले ब्लैकलिस्ट कर देगी से। जानकारी ले उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बेरा कतकोन छात्र मन के अंक ला 20 ले 40 तक बढ़ाए गए रही से, जिला गंभीर लापरवाही मानत मंडल हा जांच के बाद शिक्षक मन ऊपर कार्यवाही करीस। मंडल हा लापरवाह शिक्षक मन के एक वेतन वृद्धि संचय प्रभावी ले रोके के घलो अनुशंसा करे हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़थन बांचे समाचार गोती। कोरबा जिला के बांगो थाना इलाका मा चोटिया गांव के तीर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मा सड़क हादसा हो गए, जेमा SECL गेवरा के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी के निधन होगीस। जानकारी ले अरुण कुमार त्यागी के हाल ही मा डायरेक्टर टेक्निकल के पद मा पदोन्नति हो रही से उमन इही नवा जिम्मेदारी ल संभाले बर कार ले सिंगरौली जावत रहिन हे। इही बेरा चोटिया गांव के तीर उखर कार ह एकठन आने गाड़ी ले टकरा गीस। वे जांजगीर चांपा जिला के बलौदा इलाका में घलो हरदी बाजार रद्दा में कोयला भरे ट्रक पलट गए। एकर चपेट में आयले फटफटी सवार 2 के मौका में ही मौत हो गए। ए घटना के बाद ट्रक चलैया मौका ले फरार बताए जावत है। ओती शक्ति जिला के नंदनी गांव में बस स्टैंड के तीर 2 गाड़ी टकरा गई। हादसा में कार सवार 1 के मौत हो गई। ये हादसा में आमाकोनी गांव के सरपंच के संग 4 लोगन घायल हो गई। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कारज में बड़का लापरवाही आगू आए है। वन विभाग के शुरुआती जांच में पता चले है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के ले बाहर जाके 8,000 ले ज्यादा पेड़ काटे गए है। मामला की गंभीरता ले लेवत विभाग दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दे है। बछर 2017 में ये परियोजना पर बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिला के 402 ले ज्यादा वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे गई रही से। केसकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटे के मंजूरी मिले रहीस, जेमा जांच समिति है पाईस कि 8,000 ले ज्यादा पेड़ स्वीकृत क्षेत्र ले बाहर काटे गए है। वन विभाग है जिम्मेदार मल्ला तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी मन के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय ला भेज दे गए है। जसपुर जिला में कुनकुरी तपकरा लवाकेरा रद्दा के श्री नदी में बड़का पुलिया और पहुंच मार्ग निर्माण पर राज्य सरकार है करीबन 9 करोड़

0: 45 लाख रूपया के स्वीकृति दे हे। ये पुलिया छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा ला जोड़िया रद्दा में बनाए जाही। पुलिया बने ले तीन राज्य के बीच अवई जवई ज्यादा सुरक्षित और सरल हो जाही। हाल बेरा संकरा पुलिया होए के सेती बरसात के दिन में परेशानी होत रहीस, एखर सेती लंबा बेरा ले क्षेत्रवासी मन पुलिया के मांग करत रहिन। वन मंत्री केदार कश्यप आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS आधारित सूचना और संवाद तंत्र के शुभारंभ करीन। संग्राहक मल्ला जानकारी ले बर टोल फ्री नंबर 9811125813 मा मिस कॉल करना होही। मिस कॉल के बाद 911 ले शुरू हुआ नंबर ले उपयोगकर्ता मल्ला कॉल बैक आही। फोन उठावत ही संग्राहक मन अपन स्थानीय बोली हल्बी और गोंडी में घलो जानकारी सुन सकी। और अब जानो मौसम के हाल। प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन द्रोणिका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश ले अंदरूनी ओडिशा और छत्तीसगढ़ ले होवत गुजर ही। एक प्रभाव ले प्रदेश में काली कुछ एक जगह गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। महासमुंद पुलिस एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और कोमा खान पुलिस संयुक्त रूप ले कार्यवाही करत एक ठन एम्बुलेंस ले 75 किलो गांजा जब्त करे है। आरोपी मन ओडिशा ले गांजा लेके महाराष्ट्र जावत रहीन। ये मामला में महाराष्ट्र के 5 जन तस्कर मन ला गिरफ्तार करे गए है और उखर तीर ले गाड़ी और 5 ठन मोबाइल जब्त करेगीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम डहर ले काली राजधानी रायपुर के ESIC अस्पताल रामाभाठा में निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन करेगीस, जहां 40 बच्चर ले ज्यादा उम्र के बीमा होए अब्बड़ झन श्रमिक मन स्वास्थ्य जांच कराइन। और आखिर में प्रमुख समाचार है गांव फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के हो इस बिहाव। देश भर के संग काली छत्तीसगढ़ में 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिमबंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। DRDO तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति।

0: समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत्, तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
1: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज पर। दहेज एक ऐसा नाम जो बेटी के पैदा होते ही माता पिता के जहन में ऐसा बस जाता है जैसा रगों में दौड़ता खून और खून में बसी ऑक्सीजन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे आप अपने सुझाव एवं विचार समय पर हम तक पहुंचा सके। तो हमारा नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
0: तो बढ़ते हैं आगे की ओर। दहेज प्रथा एक ऐसा शब्द है जो बेटी के पैदा होने की खुशी को छीन लेता है। जब जब बेटी का चेहरा देखते हैं, दहेज शब्द आंखों के आगे नाचने लगता है। बेटी का प्यार क्या होता है, दहेज शब्द के सामने नजरअंदाज होने लगता है। जैसे तैसे माता पिता दहेज समेट लेते हैं। खुशी दौड़ जाती है आंखों में कि अब इतना दहेज समेट लिया है कि बेटी को विदा कर पाएंगे और वो अपना जीवन खुशी से बिता पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेटी अपने माता पिता को तिल तिल बचत करते देखती है, अपनी खुशियों से, अपनी जरूरतों से समझौता करते देखती है। सिर्फ बेटी के ब्याह के लिए रख लेते हैं,

ये कहते हुए देखती है तो कहीं ना कहीं शायद उसे अपने होने पर अफसोस होने लगता है। और फिर आता है वो एक दिन जब पिता दहेज समेटने लायक खुद को समझने लगता है। तब तक वह समय भी नजदीक आ जाता है कि उसे ब्याहने की तैयारी शुरू हो। यही चिंता में एक पिता का जीवन निकल जाता है। बेटी की शादी का समय आ जाता है। खूब धूमधाम से लोग जश्न में आते हैं। सभी की नजरें चारों तरफ बस यही देखती है कि पिता ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितनी सुंदर सजावट है, क्या क्या दिया लड़के वालों को। रस्में चल रही हैं और सब लोग व्यस्त हैं देखने में कि कितना सोना मिला, कितना नगद मिला, रिश्तेदारों को क्या दिया, लड़की वालों ने खरीदारी कैसे की। पर कोई एक भी शख्स नहीं होता जो पढ़ सके उस लड़की की नजरों को, जो बार बार अपने चारों तरफ की शानो शौकत और लेन देन की रस्मों को देखकर सिर्फ ये सोचती है कि पता नहीं पापा ने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा कम कर लेते, कितना कर्ज उठा लिया ये सब करने में। वहीं दूसरी ओर कोई भी शख्स नहीं देखता उन माता पिता की नजरों को, जो हर पल घबराई हुई सी नजरों से हर एक मेहमान के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है कि जो भी किया सब लोग खुश तो है ना, या संतुष्ट तो है ना। जाते जाते जब कोई ये कह जाता है कि आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया या आपने कितना कुछ दे दिया, माता पिता एक सुकून की सांस लेते हैं कि चलो अब उनकी बेटी खुश तो रहेगी उस घर में। ये दहेज प्रथा समाज को दो तरह से कुदेड़ती है। एक तरफ जहाँ दहेज के कारण एक लड़की को दुनिया के सामने झुककर रहना पड़ता है, वहीं कम दहेज लाने या दहेज न ला पाने के कारण ससुराल की प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। आए दिन समाचार पत्रों में दहेज के कारण स्त्री का परित्याग, जिंदा जलाना, खुदकुशी आदि जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, जो कि दहेज जैसी बुरी प्रथा के कारण हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये प्रथा कहीं ना कहीं लड़के वालों पर भी भारी पड़ रही है। ये प्रथा जहाँ कुछ धार्मिक लोगों ने कन्यादान के साथ दिए जाने वाले दान के रूप में फैलाई, वहीं एक बोझ डाल दिया कन्या पक्ष पर कि यदि बेटी को खाली हाथ विदा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बेचारा बेटी का पिता जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ जोड़ता ही है कि बेटी को खाली हाथ विदा ना करे और धर्म के नाम पर होने वाले पाप से खुद को बचा सके। क्या बेटी पैदा करके माँ बाप कोई गुनाह करते हैं? शायद इसी डर से बेटी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। पर बेटी बोझ नहीं है। क्यों पूछा जाता है बेटी से कि ब्याह करके आई है तो साथ में क्या क्या लाई है, गाड़ी लाई है या नहीं, और लाई है तो कौन सी कंपनी की है, रिश्तेदारों के लिए क्या क्या तोहफे लाई है, वगैरह वगैरह। पर एक भी शख्स उसकी आंखों को नहीं पढ़ पाता जो भीगी हुई है और सबसे एक ही बात कह रही है कि मत पूछो क्या क्या लाई हूँ, बस एक बार इतना पूछो कि क्या क्या छोड़ कर आई हूँ। भाई बहनों संग लड़ना झगड़ना और खूब मस्ती भरे दिन छोड़ कर आई हूँ, अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपनी सारी चीजें जो किसी को छूने नहीं देती थी वो सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, सखियों के संग खेले हुए खेल खिलौने छोड़ कर आई हूँ। ये चीजें जो आप सब देख पा रहे हैं आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएंगी, पर जो चीजें मैं छोड़कर आई हूँ वो चीजें मुझे इस घर में मिलेंगी क्या? कोई नहीं पढ़ पाता ये सारी बातें उन भीगी आंखों में। कोई नहीं कहता कि बेटी मैं तेरी माँ बनूंगी, मैं तेरा पिता बनूंगा, मैं तुझे भाई का प्यार दूंगा, बहन का प्यार दूंगी। क्यों? सिर्फ इसीलिए शायद कि वो किसी पराए घर से आई है, इसीलिए उसे वो जगह नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। उस लड़की के भी तो सपने होंगे, कुछ ख्वाब होंगे, वो क्यों नहीं दिखते? उसके अरमान हैं, वो कुछ उम्मीदें साथ लाई है, वो क्यों नहीं दिखती? वो अपने सारे फर्ज सारी जिम्मेदारियां निभाती है, वो क्यों नहीं दिखती? दिखता है तो बस उसके साथ आया हुआ दहेज। आज हर बेटी इतनी लायक है और सक्षम है कि अपने ब्याह का पूरा खर्च खुद उठा सके, अपना दहेज खुद बना सके, अपने घर और गृहस्थी के साथ साथ आजीविका भी

0: अर्जित कर सके। फिर भी बहू लाते समय सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ दहेज पर ही होती है। क्यों? वर पक्ष इस तरह अपने बेटे को कन्या पक्ष के सामने पेश करते हैं जैसे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाकर उन्होंने खुद पर नहीं, अपने बेटे पर भी नहीं, बल्कि कन्या पक्ष पर कोई एहसान किया हो। हमारा पढ़ा लिखा और सभ्य समाज इस बीमारी में सबसे ज्यादा पीड़ित है। दिखावे के नाम पर ऊंचे से ऊंचा दहेज लेना और देना उनके रीति रिवाजों में शामिल होता जा रहा है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो हैसियत ना होते हुए भी मजबूर होते हैं रस्मों के नाम पर ऊंचा दहेज देने के लिए। क्यों इस प्रथा का अभी तक अंत नहीं हो पाया है? क्या कारण है? यदि इस बारे में सोचा जाए तो कई कारण हो सकते हैं, वे हमारे सामने है भी। जैसे लड़कियों को शुरू से ही कमजोर व आश्रित रखना, सही शिक्षा का न दिया जाना, आवाज उठाने पर अपनी मान मर्यादा और इज्जत का हवाला देना, वहीं दूसरी ओर लड़कों को बलवान होने का पाठ पढ़ाना, खुद को समाज में सर्वोपरि समझना और समाज के बनाए गए पुराने और खोखले रीति रिवाजों को ना तोड़ने की समाज द्वारा दी गई एक छोटी सोच जो शुरू से ही लड़कों के मस्तिष्क में उपजा दी जाती है। पुरुष और नारी में फैला हुआ एक अंतर जो खत्म होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़ा है। समाज में फैली इस बीमारी का इलाज करने कौन आएगा? नहीं, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आइए सुनते हैं इस नाटक को जिसमें लड़का और लड़की दोनों ने ही पहल की।
1: हेलो सूरज।
2: हाँ रेखा, कैसी हो तुम?
1: मैं ठीक हूँ, लेकिन।
2: क्या लेकिन? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
1: कहीं आप समाज और परिवार के डर से अपना फैसला तो नहीं बदल लोगे?
2: अरे रेखा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं एक पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का हूँ।
1: वो सब मुझे पता है, पर ये समाज और परिवार का डर मुझे खाए जा रहा है।
2: मैंने जो बातें तुमसे कही है और जो वायदे मैंने तुमसे किए हैं उनको जरूर मैं पूरा करूँगा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नीचे नहीं दिखने दूंगा।
1: मुझे आप पर यकीन है कि आप कुछ गलत नहीं होने दोगे, और आपके साथ से ही इस गांव में शायद ये पहली शादी होगी जो बिना किसी दहेज के होने जा रही होगी।
2: आज मैंने माँ और बाबूजी को आपस में बात करते हुए सुना कि हम उस लड़की से कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन अगर गांव वालों ने ज्यादा सवाल किए तो क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने दिखा तो वो दोनों चुप हो गए।
1: चुप क्यों?
2: पता है तुम्हें तो, मेरे इस निर्णय को मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया था। फिर मेरे समझाए जाने के बाद मान गए, लेकिन मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए।
1: बस अब सब अच्छे से निपट जाए, दो दिन बाद हमारी शादी है।
2: हाँ, इस बार नई शुरुआत भी हमें ही करनी है। चलो अब तुम आराम करो, घर में मेहमान भी आए हुए हैं।
1: ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे।
2: ध्यान रखना अपना।
1: बस परमेश्वर करे सब अच्छे से हो जाए, मेरे बाबू और माँ का सर नीचे ना होने देना।
0: देखते देखते शादी का दिन आ गया और सभी लोग गांव वाले शादी और दहेज का सामान देखने फुसफुसाने लगे। कुछ का कहना था आजकल के बच्चे अपनी मर्जी चलाते हैं, तो कुछ कहते सुनाई दिए कि ये सब लड़की के माँ बाप की चाल है। इन सब के बीच रेखा के घर वालों ने भी शादी और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी। अच्छा स्वागत, स्वादिष्ट खाना, यहाँ तक कि बरातियों के विदाई तक का पूरा ध्यान रखा गया। और देखो वह समय आ ही गया जब सूरज और रेखा शादी के बंधन में बंधने ही जा रहे थे कि पंडित जी ने पूछ ही लिया, वधु के माता पिता वर को कन्यादान के रूप में क्या सामान और राशि दे रहे हैं। तभी सूरज बोल पड़े कि सामान में कोई कमी ना होने के कारण हम कुछ नहीं ले रहे, और राशि के रूप में 11 रुपए भी बहुत हैं। लोगों के फुसफुसाने पर कहा कि मुझे मेरे घर में कोई कमी नहीं जान पड़ती, कमी तो बस एक बहू की है, तो हम बस वही ले जाएंगे। सभी गांव वाले और बरातियों का मुंह बंद हो गया, कोई कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, और बोलते भी क्या। सूरज खुद एक सरकारी नौकरी पर कार्यरत है और रेखा भी तैयारी कर रही है, जल्द ही रेखा की मेहनत रंग लाएगी। विदाई का समय आ गया, सभी की नजरें थी कि भले ही कितने भी ऊंचे विचारों के क्यों ना हो, लेकिन किसी भी लड़की के माता पिता लड़की को घर से खाली हाथ विदा नहीं करते, और हुआ भी ऐसा।

0: रेखा के घर वालों से जो बन पड़ा वो सब नकदी के रूप में विदाई के समय रेखा के हाथों में थमा दिया। लेकिन सूरज ने भी सभी का सम्मान करते हुए कहा कि अगर आपको देना ही है तो ये रेखा के नाम से उसके खाते में डलवा दें, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको मुझसे नहीं वर अपनी बेटी से हक से मांग सके। सूरज की बातों ने वाकई सबका मन मोह लिया था। सभी कहने लगे, दामाद मिले तो सूरज जैसा मिले। इसी के साथ कुछ पंक्तियां बोलकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। क्यों जला दिया उसे दहेज की होली में, बैठकर वो आई थी ख्वाबों की डोली में। क्यों पूछा उससे साथ क्या क्या लाई हो, क्यों ना पूछा उससे क्या छोड़कर आई हो। कितना रोई, कितना चीखी, कितना चिल्लाई होगी, अपनी जान बचाने को कितना गिड़गिड़ाई होगी। क्या बीती होगी माँ पर जिनकी बेटी तुमने जलाई होगी। रो रो कर उस बाप ने इंसाफ की गुहार लगाई होगी। क्या जानोगे दर्द उस भाई का जिसने अपनी राखी गवाई होगी। क्यों उन सब ने घर तुम्हारे अपनी बेटी बिहाई होगी। जीने दो माँ की लाडली को, भर दो प्यार से झोली को। श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से जुड़े अपने सुझाव विचार हम तक जरूर पहुँचाए। इसी के साथ आप एक बार नंबर हमारा फिर से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। फिर से दोहराना चाहूँगी, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर

0: में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी जोड़ों का अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सक्ती जिले में 70 और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के कार्यक्रम में विशेष रूप से 4 बैगा आदिवासी परिवारों के जोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
4: सभी जिलों में आज के दिन सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 72 जोड़े ने अपना पंजीयन कराया है। इन 72 जोड़ों में से 2 जोड़े जो हैं वो बैगा समुदाय से हैं। और हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि बाल विवाह पे रोक लगाने के साथ साथ हम बच्चियों के विवाह पर भी जो शासन की योजना, उनका लाभ उनको पूरी तरीके से दिला रहे हैं।
3: राज्य सरकार ने बीते 6 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल का आदेश जारी किया था। इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रुक्तिमा यादव को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जारी आदेश में रुक्तिमा यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया था। वहीं आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज लोकभवन में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राज्यपाल रमन डेका से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमैन तोमन साहू और अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने राज्यपाल को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दी। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी ने राष्ट्रपति

0: प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काट की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। कोरबा जिले में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास हुए सड़क हादसे में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरुण कुमार त्यागी को हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया था। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए कार द्वारा गेवरा से सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान चोटिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक पार्सल वाहन से टकरा गई। इस दुर्घटना में श्री त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के हरदी बाजार रोड में आज कोयले से भरे ट्रेलर के पलटने से मोटरसाइकिल सवार पुरुष और महिला इसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में अमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित चार लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले में तीन धान खरीदी केंद्रों कीरित, कराड़ी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद तीन थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और आईवीआरएस आधारित सूचना और संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। वनोपज संग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 9811125813 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल के बाद 911 से शुरू होने वाले नंबर से उपयोगकर्ता को कॉल बैक आएगा। कॉल रिसीव करते ही संग्राहक अपनी स्थानीय बोली जैसे हल्बी और गोंडी में महत्वपूर्ण जानकारियां सुन सकेंगे। जानकारी सुनने के साथ ही उपयोगकर्ता अपनी राय, अनुभव और सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। महासमुंद पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक एम्बुलेंस से 77 किलो गांजा जब्त किया है। ये गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस, पायलटिंग कार और 5 मोबाइल फोन समेत कुल 50,45,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हवा की गति तेज रहने के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सोशल मीडिया पर रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

0: और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 8 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एलिस तिर्की, प्रमुख वैज्ञानिक पादप कार्यकी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 1 400 3482, हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 400 3483, और हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 400 3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 8 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 से किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए बॉम्बे फिल्म का ये गीत ए हरिहरन की आवाज में। गीतकार हैं महबूब और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

ए हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में लीजिए सुनिए जिद्दी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पहला फ़ोन नंबर है 400-3482। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 400-3483। और हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 से किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। अभी आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए क्रिमिनल फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है MM करीम ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम लो भैया।
1: राम राम पूजा और संगे संग चौपाल सुनिए जम्मो संगवारी मल्ला हम दोनों के
0: राम राम, राम। भैया गर्मी के दिन मा तरिया के पार मा आमा के पेड़ ले आमा टोर के नून मिर्चा संग खाए मा बड़ा आनंद आते। तरिया के पार के ठंडा हवा के आनंद लेका सियान चिरई चुरगुन जिनावर सब ले थे।
1: क्या बात है पूजा, बड़ बढ़िया शब्द ल जमाए हवस और एकदम ऐसी लगीस कि मैं देखत हूँ। बोले देख अब कहाँ तरिया कुआं नरवा डबरी ये सब कहाँ देखे मिलते। भाई तरिया नरवा कुआं मन हवे तो बहुत गंदा रही थे।
0: बिल्कुल
1: पहले ट्यूबवेल या जैन बोर है ज्यादा नहीं रही। फिर भाई यही तरिया कुआं और डबरी लोगन पानी पिया है अधिक पानी साफ रहा है। निस्तारी बार पानी ले उपयोग करें और स्वास्थ्य माने घलो खर ठीक रहा है। अब कहूँ देखे बार पानी उपयोग करते हैं तो भाई आदमी बीमार पड़ जाए।
0: बिल्कुल और बीमार पड़ जाही तो एक

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: पूजा, जैन पानी के पहली स्रोत मन रहा है, देखे जाए तो भाई पहली के उपयोग करिया के तरीका भी लग रही है, और अब देखे जाए तो वो स्रोत मना पूरी तरह से गंदा हो चुके हैं, यानी कि पीने के लायक नहीं रही गए है ना।
4: अब भैया ये होए काबर है, काबर की हम अपन घर के गंदा पानी ला, गंदा घर के गंदा कचरा ला, सब ला तरिया नरवा कुआ डबरी सबों में तरिया नरवा डबरी मा अपन घर के जो जीव जनावर है जैसे भैंसा है बैला है उन्हें नहवा घलोक देते, जेमन पोसे तेमन है, कई जन मन कपड़ा धो देते भाई, तब एकर होते का कि तरिया नरिया गंदा तो हो गया, ओमा जो रसायन है बहु मिल गई, तो ये अपन भविष्य ला सुरक्षित करना है तो हमारा जल संरक्षण और अपन पारंपरिक स्रोत मन के संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है।
3: सबले ज्यादा जरूरी है तरिया, अभी कुआं के जन तल में बैठे गंदगी है, लद्दी है, ओला हटाना। कई बारे में लोगन मन आगू आते और भाई घर काम घलो करते, और एखर ले का हुई कि जन जल भंडारण के क्षमता है वो बाढ़ी, भाई तरिया नदिया कुआं और कचरा और गंदगी हम प्लास्टिक ला फेंके जाते हैं, भाई इनमें रोक लगना चाहिए।
4: बिल्कुल भैया, और देखना घर के फूल पान कहान या फिर मंदिर में जैसे मान लो चढ़ावा थे, कोई फूल पान चढ़ावा थे वह लोहू में ठंडा करा था कि सरो दे थे, तो ओकरो पर तो अलग से टंकी बनाया जा सकते थे या अलग से कोई ऐसे पात्र या कुछ रख सकते थे कि भाई ओमा रखन तो ओमा कचरा सरत जाही तो वो खाद भी बन जाही ता ओला उपयोग भी कर सकत हन अपन खेती खार बर या बाड़ी बखरी बर कोनो मेर भी। और भैया तालाब के पार मा पेड़ लगावन है ना, ये माटी के कटाव ला रोकथे, जल स्तर ला बढ़ाए मा मदद करथे, बनाए रखे मा मदद करथे। अब तरिया मा या कुमा जैसे पचरी बनावत हन है ना, तो ओला बना देवन ओकर मरम्मत करवावन, यहू ले जो है माटी के कटाव हा रुकथे।
3: भाई माटी के कटाव रुकी तो उपजाऊ माटी है बांचे रही, और कहते ना कि पेड़ मन हा माटी ला संभाल के रखते,
4: बिल्कुल।
3: तो बरसात के जिन पानी है ओला घलो सकेलना बहुत जरूरी है। आजकल घरों घर में जिन वाटर हार्वेस्टिंग है ओला लगाए बर भाई शासन घलो और लोगन मन घलो जागरूक हो गए थे, और ये कहा थे कि घर अपन जब बनाए अपन जब योजना बना था तो पानी कहाँ सकेलू, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होना चाहिए। अब ये वाटर हार्वेस्टिंग है भूमि जल के जिन स्तर होला बढ़ाए में काम आते, और संगे संग भाई अवैया समय में पानी सूख जाही तो फिर स्रोत मन कहाँ रही, तो स्रोत मन के जिन निर्माण है वो भी नवा स्रोत निर्माण हुई, और एखर ले जिन भूया के जल स्तर है बाढ़ी और हमर मन के जिन आवश्यकता है पानी के वह पूरा हो
4: रही। अब भैया ये जो वाटर हार्वेस्टिंग हमन कहा था नीला बाद में घलोक हम उपयोग कर सकत हन है ना, सिंचाई बर घलोक उपयोग कर सकत हन या दूसर काम बर घलोक उपयोग कर सकत हन, तो ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग कोई नुकसान की चीज नो है, फायदा की चीज हरे। तो भाई पारंपरिक स्रोत के साफ सफाई ही सिर्फ जरूरी नहीं है, पानी की कमी ला ये दुरियाते, भलुक गर्मी के दिन में ये पानी के परेशानी ला घलोक दुरियाते, तो भाई एकर पानी के संरक्षण करो, पारंपरिक जो जल स्रोत है ओकर मन के साफ सफाई करत हम अपन भविष्य ला सुधरा सकत हन।
3: अभी देख ना गर्मी के दिन आगे है और बीच बीच में ऐसे लगत रही से कि पानी सूख जाही का, और कई जगह देखबे तालाब सूख जाते है ना, और ओखर ले जानवर है चिड़ै चिरगुन है और भी जली जीव है ओमन के जीवन खत्म हो जाते, और जिन प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र है ओखर जिन कहना चाहिए संतुलन बिगड़ जाते, और संतुलन तब बने रही जब हमारे पानी के जिन स्तर है वो बढ़िया रही। भाई पानी ले जिंदगानी है हमन के थन, और हर एक पेड़ के कहानी है।
4: हाँ भैया, आओ गुड बात अब आओ करबो, फिर अभी बेरा मनोरंजन के है ते सुन लेथन ये गीत जिला स्वर दे रजनी रजक और साथी मन है।

0: ये गीत ला स्वर देनी रजिन रजक अंकुर साथी मन हा
1: पूजा जब गोट बात अपन करते हैं खेती किसानी के है ना तो खर बीच में संगीत जन बज जाते हैं तो उमे इसे लगते हैं कि जन खेती किसानी के जन काम होता है वो संगीत संग कतका सुघर होते है ना भाई थकान के मालूम नहीं पड़े और वो काम घलो है एक सुर में होते हर एक चीज के एक सुर एक ताल होते तो किसान संगवारी मन यहुल करते देखो आज दिन है शुक्रवार और जिन श्रोता संगवारी मन है हमार एक ठन जिन क्रम है ओकर बड़ा गोरा करते कबर के ओमा बहुमन शामिल होते फोन के माध्यम से मोर इशारा समझ गए होबे
0: बिल्कुल समझ गए भैया कबर की आज होते हेलो चौपाल हमर फोन इन कार्यक्रम और आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय है औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती और ये विषय में हमर जो किसान भाई मन के फोन आए तेकर समाधान करत है तेकर उत्तर देवत है डॉक्टर एलिस तिर्की जी हाँ आप मन प्रमुख वैज्ञानिक पादपकारी की रायपुर हो और ये कार्यक्रम के संचालन करते है लव कुमार सिंह और प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे जी है सुनथन ये कार्यक्रम

0: फोन के माध्यम ले होही सोझे सवाल मिलही विशेषज्ञ ले शंका के समाधान अपनाबो सलाह तसुधरही खेती किसानी के हाल आगे हमर फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल। हेलो चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला राम राम। संगवारी हो हमर फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल मा आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मन जानथो हर शुक्रवार के हमन आप मन खातिर लाथन फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल जेमा आप मन हमर ले जुड़थो फोन के माध्यम ले और पाथो अपन शंका और जिज्ञासा के समाधान हमर आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ ले। तो संगवारी हो हमर हेलो चौपाल के आज के विषय है औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती और ये विषय में आप मन के सवाल और शंका समाधान खातिर हमर संग हमें विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर एलिस तिर्की जी। आप मन हवो प्रमुख वैज्ञानिक पादप कार्यकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। विशेषज्ञ मैडम हमर फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल मा जम्मू सुने संगवारी मन डहर ले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
1: नमस्कार
0: मैडम। एकर पहली की संगवारी मन के फोन आए आप मन ले जानना चाहबो कि भाई ये सुगंधित और औषधि यानी दवाई वाले जिन पौधा होते वो कौन कौन से पौधा है और एकर खेती यानी कि किसान संगवारी मन खातिर का महत्व रखते बताते हो।
1: जैसे कि आपने कहा सुगंधित और औषधि पौधे जी। ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, होते हैं
0: जी।
1: सुगंधित पौधे में जिन पौधों से हम ऐसे तेल या फिर फूल से या फिर पत्तियों से या फिर जड़ों से हम तेल निकालते हैं और उस तेल का उपयोग हम विभिन्न वस्तुओं में जैसे सौंदर्य प्रसाधन साबुन बनाना या फिर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका उपयोग किया जाने वाली चीजें जिसमें एरोमा रहता खुशबू रहता है इन तरह के पौधों को हम सुगंधित पौधे कहते हैं। इस तरह के पौधे जैसे खस लेमन ग्रास सिट्रोनेला पचौली तुलसी इत्यादि ये सारे जो पौधे हैं इन सब का पौधे से पौधों के पत्तियों से खस का जड़ से इस तरीके से अलग अलग उपयोग सुगंधित द्रव निकालने के लिए उपयोग किया जाता है वो सुगंधित पौधे कहलाते हैं। औषधि पौधे उन पौधों को कहते हैं जिन में कोई ना कोई औषधि गुण मौजूद होते हैं और किसी न किसी बीमारी के उपचार के उपयोग के लिए इसका सेवन किया जाता है। जैसे अश्वगंधा हाँ, सर्पगंधा
0: हाँ,
1: अश्वगंधा का कमजोरी को दूर करने के लिए बल बढ़ाने के लिए सतावर की जड़ का उपयोग किया जाता है दूध ज्यादा बढ़ाने के लिए मवेशियों में प्लस इंसानों को भी इसकी खुराक दी जाती है। तो इस तरह के जो पौधे हैं इसका एक अलग ग्रुप है जिसे हम औषधि पौधे के रूप में चिन्हित करते हैं
0: यानी कि स्वास्थ्यवर्धक होते और अलग अलग सब उनके गुण होते जिन्हें हम अलग हलो फायदा पहुंचाते
1: जी।
0: बड़ बढ़िया बात अपन बताया मैडम। तो संगवारी मन के फोन आवत है हेलो चौपाल। हेलो चौपाल मा आप मन के बहुत बहुत स्वागत है भैया। आप मन कहां ले बोलत हो और कौन बोलत हो बता। राम राम।
2: राम राम भैया जय जोहार।
0: जय जोहार भैया।
2: हम गाँव जगपोच से बोला था भैया राधेलाल जी चापा जानकी जिले से बोला था भैया।
0: राधेलाल जी कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आप मन के पहली फोन लगे आपने बहुत बधाई। आज के दिन विषय है औषधि और सुगंधित पौधा मन के खेती ये विषय से संबंधित आपके का प्रश्न है पूछते भैया।
2: तो हम ना भैया ओ गुलाब फूल और मोगरा फूल के हाँ। थोड़ा सा शौक रही से तो मल्ला है तो जरूर हवा जरूर लेकिन और थोड़ा बढ़ोतरी लाना चाहते हैं कि भैया।
0: अच्छा तो जानथन आप मन के सवाल के जवाब आज के विशेषज्ञ तिर्की मैडम ले। मैडम बताते हो।
1: भैया नमस्कार।
2: राम राम दीदी। राम राम।
1: राम राम भैया। भैया ये आपने घर हाँ। के लिए उगाते हैं या उसके पुष्प को आप मार्केट करते हैं या फिर उससे तेल निकालते हैं या फिर और कोई काम में उपयोग करते हैं।
2: दीदी वाला अभी फिलहाल अभी पौधा कुछ काम है दीदी
1: हाँ।
2: कोई बढ़ोतरी लेना है अभी तो हवा पौधा तो हर गाँव ग्रामीण से ठीक हो जाते है और बाहर मार्केट पर भी नहीं ले जा पाथन काबर के पौधा कम है होकर बढ़ात और उत्पादन के लिए कुछ बढ़ोतरी के लिए कुछ जानना चाहते रहें दीदी।
1: अच्छा जैसे आपने जिन पौधों को आपने बोला गुलाब का पौधे हाँ, का हाँ। दो तीन तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। एक तो आपके बागीचे हाँ, हाँ। की खूबसूरती बढ़ाता है और उसमें दो तीन किस्म होते हैं जैसे कि सुंदरता के लिए उगाई जाती है उसमें विभिन्न रंग के गुलाब होते हैं और उसमें खुशबू नहीं होता है। एक दूसरा होता है जो खुशबू के लिए लगाते हैं जो देसी गुलाब होता है और उसका तीसरा जो गुलाब का हम उपयोग करते हैं ऐसे

0: गुलाब के पौधे, जिसका हम सुंदरता के साथ साथ हम उससे कुछ ले सके, कुछ आय अर्जित कर सके, तो ये जो पौधे होते हैं वो एक अलग किस्म होते हैं। उनमें बहुत सारे जो फूल आते हैं, उन सारे फूलों को हम एकत्रित करते हैं उसके मौसम में, और उससे तेल निकालते हैं, और उस तेल को हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जिससे हम रोज वाटर बोलते हैं, गुलाब जल, जिसका हम बहुत सौंदर्य प्रसाधन में, खाने खाद्य पदार्थों में, बहुत सारे आइसक्रीम बनाने में इससे इस्तेमाल किया जाता है, और उसके जो तेल उसका हम परफ्यूम बनाते हैं। तो आप यदि आप अपने बागीचे में सिर्फ एक सुंदरता के लिए कर रहे हैं, तो उसके उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर के महीने में उस पौधे का ट्रिम करना ज़रूरी होता है, और कटिंग करने के बाद नए जो ब्रांचेस आते हैं, नए जो उसमें से शाखाएं निकलती है, उसमें फिर अच्छी तरीके से पुष्पन होता है, उस समय पे हो जाना चाहिए। और यदि आप उसे एक साल या कुछ समय छोड़ देते हैं, तो वो आपका वो उस तरीके से पुष्पन नहीं आता, और उतने ब्रांचेस उतने फूल आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये एक सीधा तरीका है।
1: दीदी वाला तो ऐसे हर साल ना होला, एक बार वाला छटिंग करत रहन, और मोगरा वगैरह के घलो फूल है, तब वो इसने कुछ घर के घरेलू अपन इस्तेमाल करके लायक है। दीदी तो ही ना हम ये कहना चाह रहे, और बढ़ाना कहे बढ़ा चाह करके थोड़ा मार्केटिंग पहुंच जाए ऐसे।
0: तो अगर आप उसको मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छी किस्म का चयन करना पड़ेगा। चाहे या गुलाब के पौधों की खेती करना चाहते हैं, या फिर आप मोगरे की खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले एक अच्छी उच्च किस्म की जो वैरायटी होती है उसे लेना चाहिए। जैसे गुलाब का अगर हम कहें तो नूरजहां एक किस्म है जो बहुत ही ज्यादा सुगंधित पौधा है, और उसका आप बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट में बहुत सारी चीजें बिकती है, आप पंखुड़ी बेचेंगे तो बिक जाएगा, आप तेल निकाल के बेचेंगे तो बिक जाएगा, यदि आप उसको गुलाब के तौर पे बेचेंगे तो बिक जाएगा, लेकिन आप किस तरीके से आय कमाना चाहते हैं। अगर आप पंखुड़ी बेचते हैं तो आपको दूसरा रेट मिलेगा, अगर आप तेल निकाल के बेचते हैं तो उसका रेट अलग होगा। तो आपको अगर इसकी खेती करनी है, तो सबसे पहले आपके पास जमीन होना चाहिए, आपके पास उसका एक प्रशिक्षण ले लें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, इसकी खेती के लिए हर एक चीजों के लिए गाइडेंस किया जाएगा, ताकि आप भविष्य में कभी लॉस में ना रहें।
2: भैया आप मन फोन करे हो, और उम्मीद है कि आप ला हमर विशेषज्ञ के जिन सलाह है वो पसंद आई सो ही।
1: बिल्कुल हमारा संतुष्ट है भैया।
2: तो आप मन फोन लगाए एक खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया, राम राम जय जोहार।
2: राम राम। हेलो चौपाल।
3: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
2: आप मन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भैया।
3: हाँ, मैं नवागढ़ कटाई जिला में तरह छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
2: वर्मा जी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। आज के विषय है औषधि और सुगंधित पौधा मन के खेती, तो ये विषय ले संबंधित आपके का प्रश्न है पूछते भैया।
3: हाँ मैडम, दीदी राम राम।
0: हाँ नमस्कार भैया।
3: हाँ मोर पास दीदी जैसे 2 साल से एक परत जमीन पड़े है, करीब 1 एकड़ है
0: जी,
3: और ये जमीन में मैं औषधि पौधा और सुगंधित पौधा खेती करना चाहता हूँ, तो जमीन के तैयारी कैसन करें दीदी, और लगाए के समय कब से कब तक है, यही बात ना पूछे बर फोन लगाए हूँ दीदी आपसे।
0: जी आपके वहाँ पानी की सुविधा है?
3: पानी की सुविधा तो नहीं है दीदी वो खेत में अभी।
0: और आपका जो खेत है क्या वो चारों तरफ से उसका बाउंड्री बना है?
3: हाँ हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ का है वो बीच में है, और ओकर साइड में ना धनहा खेत हवा दीदी।
0: अच्छा, तो भैया यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हम सुगंधित पौधों के लिए किसानों को आगे आने के लिए कहते हैं, हम उनको उनका प्रशिक्षण देके उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और कई किसान इस पे खेती भी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सुगंधित पौधे का जो खेती करता है किसान, उसका मार्केट में कभी इशू नहीं आता, वो इजिली बिक जाता है। और आप जिस तरीके से जमीन बता रहे पानी की सुविधा नहीं है, तो अभी आने वाले मौसम जैसे बारिश शुरू होगी, उस समय अगर आप कुछ सुगंधित पौधे की खेती के लिए बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करके लगाते हैं, तो आपका उदाहरण बताऊं, लेमन ग्रास की खेती छत्तीसगढ़ में बहुत सक्सेसफुल है, और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से खेत की तैयारी करें कि उसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो, पानी ना ठहरे, और जब 1 या 2 बारिश हो जाए उसके बाद आप इसके बीज को लगा सकते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, और उस पौधे को 60-60 सेंटीमीटर की दूरी में लगाते हैं। इसके भी बहुत सारे किस्म हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और इससे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी विकसित एक किस्म है छत्तीसगढ़ लेमन ग्रास 1, और उसके अलावा कृष्णा सीजी CKP 25, कावेरी नीमा, बहुत सारे किस्म हैं। और

0: ये जो किस्म है आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त भी हो जाएगा, और इस खेती को यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आकर के मैं फिर से कहूंगी कि विशेषज्ञों से एक मुलाकात जरूर कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से सारी चीजों की जानकारी दे दें। और इसके में नेट प्रॉफिट आपका, अगर एक किलो की हम बात करें एक लीटर, तो मार्केट में 900 रुपए से लेकर के 3000 तक बिकता है। इसमें जो गुणवत्ता के बेस में ये प्राइस में जो इतना उतार चढ़ाव है वो है, और उसमें जो गुणवत्ता है वो सिट्रोल के पैमाने से नापा जाता है। यदि आप में आपने खेती अच्छे से किया और उसमें अच्छी किस्म को लगाया तो आपको उपज अच्छी मिलेगी और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। तो अगर नहीं की जगह हम मान ले तो 1500 रुपए प्रति लीटर के दर से आपको प्राप्त होगा।
1: नारायण भैया, आप मन फोन लगाया होकर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया, आप लोग दीदी जी लहमर जन बहुत सुंदर जानकारी दी भैया। राम राम जय
1: राम राम। तिरकी मैडम, एक पहली की दूसर फोन आए, आप मन जानना चाहबो कि कौन कौन परिस्थिति है जेमा जिन खेती है सुगंधित और औषधि पौधा के, ये हो सकत है, बताते हो।
0: ये औषधि और सुगंधित पौधे में बहुत सारी किस्में हैं और अलग अलग इसमें प्रजाति पाई जाती हैं। तो ये जो है, जैसे अगर आप खेत है वो छायादार है तो उसमें भी औषधि पौधे की खेती संभव है। जैसे पिपली, भृंगराज, काली हल्दी, आमा हल्दी, मीठी तुलसी, पचौली, ब्राह्मी, मंडूक पड़नी, इन सब की खेती एक छावदार स्थिति में की जाती है। तो जहाँ पे किसान भाई बहुत सारे आम का बागीचा लगाए हैं, पपीता का बागीचा, केले का बागीचा, बड़े पैमाने में खेती कर रहे हैं, तो उनके जो बीच का जो जगह बच जाता है वहाँ पे इन सब फसलों को लिया जा सकता है। और दूसरा, वृक्षों के सहारे चढ़ने वाले पौधे, इस तरह के जैसे आम का बगीचा है वहाँ पे किसान भाई अगर इन पौधों को नहीं लेना चाहते तो पेड़ में चढ़ने वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे गुड़मार, सतावर, शंख पुष्पी, गिलोय, इन सब पौधों को पेड़ की सहारे की आवश्यकता होती है।
1: तो जैसे पौधा लगाते किसान भाई मन है, तो इनमें कुछ खास सावधानी की जरूरत होते का?
0: इसको लगाने का समय जरूरी है कि आप सही समय से लगाएं। दूसरा, इसमें किस समय इसकी कटाई करनी है उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। यदि जैसे मैं अभी नींबू घास के बारे में बता रही थी किसान भाई को, वो मैंने कहा कि 3 से 3.5 महीने में आपको इसकी कटाई कर लेनी है। यदि किसान भाई उससे पहले यदि वो सोचता है कि मैं 2 महीने में काट लूंगा, उपज अच्छी आ रही है, तो वो उसको उस पत्तियों से जो तेल है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो जो तेल की ग्रंथि है वो उसमें बन नहीं पाती है। यदि वो लेट से अगर उसको करता है तो उसमें जो ग्रंथि है उसमें तेल जब भरा रहता है 3 से 3.5 महीने में, उसमें पूरा लबा के तेल भरा रहता है, वो ग्रंथि सूरज की रोशनी में फट जाती है।
1: अच्छा।
0: और वो उड़ जाता है तेल। तो यदि उससे बाद में अगर किसान भाई हार्वेस्ट करता है अपने फसल को, तो दोनों में उपज उसकी कम मिलेगी। पहला, लगाने का समय, और आप जिस औषधि पौधे को लगा रहे हैं उसका हार्वेस्ट कब करना है, उसको कब उसको काटना है, उसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना।
1: छत्तीसगढ़ में जिसे हमन हा किसान भाई मन लगे धन की आप मन हा धान के अलावा और जिन दिगर फसल है ओके कोती जाओ, भाई फसल चक्र के प्रयोग करो, तो जिन सुगंधित और औषधि पौधा है एकर खेती ले का जमीन के उपजाऊपन बढ़ते?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है
1: जी।
0: जो किसान भाई पहले से जो खेती कर रहे हैं धान, चावल, गेहूं या तिलहन फसल का, उनमें बहुत उपजाऊ और बहुत सारे खाद, उर्वरक और पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, उसके बिना एक अच्छा उपज लेना असंभव है। वहीं औषधि पौधे की बात करें तो जितना आप इसको कम फर्टिलाइजर देंगे, उर्वरक उसमें कम से कम डालना होता है, यदि आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट के साथ अगर थोड़ा बहुत खाद डाल रहे हैं तो इससे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इससे पशु नहीं चरता,
1: हाँ।
0: और उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता,
1: यानी कि सुरक्षा की जन खर्चा है
0: हाँ
1: वो बचते
0: बचता है
1: जी।
2: हेलो क्या पाल
1: भैया, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोलत हो और कहाँ बोलत हो बताते भैया?
2: लखनपुर का बोलत हूँ भैया, धनी राम चंद्रवंशी
1: जी। धनी राम जी के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और आज के विषय है औषधि और सुगंधित पौधा मन के खेती, तो एकर विषय ले आपके का प्रश्न है भैया पूछते हो?
2: सुगंधित पौधा माँ कौन से पौधा लगाए जाए भैया, यही बात लो पूछे लगा, जैसे कि चंदन उंदन की पेड़ है
1: जी,
2: सुगंधित झाड़ है, तो वो का लगाए जाए माँ?
1: हाँ मैडम, मैं जानना चाहते अपन मने सुविधा के हिसाब से।

0: संसाधन मान ले है, तो काय मन ऐसे पौधे लगा सके थे
1: जी। यदि किसान भाई खेती के रूप में लेना चाहते हैं तो चंदन का जो पौधा है, चंदन का पौधा ज़्यादातर जो है वो साउथ का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत अच्छा होता है और इधर बस्तर साइड का इधर वाले रीजन में अच्छा होता है। लेकिन हम वो जो बड़े पौधे हैं उसके बारे में नहीं, हम छोटे पौधे जो झाड़ी नुमा शाक होते हैं उसको हम उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, खासकर जिसमें सिट्रोनेला, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को अभी मैंने बहुत बताया कि लेमन ग्रास की खेती एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है किसानों के लिए। और इसमें यदि किसान भाई एक बार अगर बुआई करते हैं तो 4 से 5 साल तक उसी बुआई से आप उसका साल में 3 से 4 हार्वेस्टिंग उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। वो इसका इस लेमन ग्रास के तेल का बहुत सारे विटामिन ए के कैप्सूल में बनाने के लिए और अगरबत्ती, साबुन और खाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे ही सिट्रोनेला एक पौधा है, सिट्रोनेला का जो पौधा है जिसमें आप मच्छर मार अगरबत्ती या मॉस्किटो रिपेलेंट जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है सिट्रोनेला के पौधे से। इसका भी खेती बहुत आसानी से किया जाता है और छत्तीसगढ़ में इसके खेती संभव है। इसके भी कई किस्म अवेलेबल है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास। वैसे ही रोसा ग्रास की भी खेती संभव है। और मिंट पुदीना जो है उसे जो हम खाते हैं वो मिंट, और जो हम किसानों को बताते हैं ये मिंट दो अलग अलग किस्म होती हैं। हम जिस मिंट के बारे में कहते हैं वो जैपनीज मिंट है। इसमें जो तीखापन होता है वो सिंथॉल के कारण होता है, मेंथॉल कंटेंट इसमें होता है जिसको आप चबाते हैं और इतना तेज़ मिर्ची की तरह लग, और अगर हम देसी पुदीना इस्तेमाल करते तो उसकी चटनी खाया जा सकता है, उसमें इतना तेज़ और तीखापन नहीं होता। तो हम जो है मिंट जिसको हम मेंथा आर्वेंसिस कहते हैं, इस प्रजाति को किसानों को कहते हैं कि इस किस्म को लगाइए ताकि उसमें से आपको मेंथॉल कंटेंट ज़्यादा मिले। तो ये भी इसकी खेती छत्तीसगढ़ में संभव है। यदि आपके जमीन पानी के पास है और जल भराव वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर खस की खेती की जा सकती है। ये भी गंधित पौधे हैं और ये जो खस का जड़ है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा दामों में बिकने वाला पौधा है। और ये जब फसल किसान लगाता है तो इसकी देखरेख में भी बहुत कम उसको ध्यान देना पड़ता है। और छठवां जो फसल है वो पचौली का है। पचौली की पत्तियों से तेल निकाला जाता है। पचौली छावदार जगह में लगाया जाता है, जैसे मैंने बड़ा बताया कि बड़े बड़े बागीचे हैं और उस बागीचे में बहुत सारे पौधे लगे, उसकी छाँव में बहुत सारे फसल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शन है, इस पौधे को हम लगा सकते हैं और इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो चौपाल।
2: राम राम भैया।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था, बताते भैया।
2: मैं छठवार पारा कनेरी बोला था, सनत कुमार यादव।
0: सनत कुमार यादव जी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय है औषधि और सुगंधित पौधा मन की खेती, तो इखर बारे में आपके का प्रश्न है पूछते भैया।
2: मैं जानना चाहता हूँ कि अपन यहाँ गमला मन में ना तुलसी पौधा लगाया
0: जी,
2: तो ठीक से हरा भरा नहीं रहा है और मन सूख गया थे, बढ़वार भी ठीक नहीं होते, का कारण है और कैसे एक उपचार किया जाए, जानना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो जानते हैं आप मन की ये शंका के समाधान विशेषज्ञ तिरकी मैडम।
1: हाँ भैया नमस्कार। आपने जो गमले में पौधा लगाया है वो पौधा अच्छे से बढ़ नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं?
2: जी जी, और वो पत्ता ना सूख जाता है।
1: तो इसमें आप उसकी जो गमले में जो मिट्टी है उस मिट्टी को बदल दीजिएगा। जैसे बरसात होता है, मौसम अनुकूल होता है, तब आप उसके जो गमले की मिट्टी है उसको पूरा बदल दीजिएगा, नई मिट्टी उपयोग करिएगा और उसमें गोबर का खाद जरूर डालिएगा और रेती डालिएगा। रेती, गोबर का खाद और मिट्टी डालिएगा, दोनों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
0: तो सनत कुमार भाई मन फोन कर रहे हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चौपाल।
3: हेलो नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, कहाँ ले बोला था और कौन बोला था, बताते हो?
3: मैं बोला था भैया दीपाली
0: जी,
3: मोर गांव है गैतरा गांव।
0: अच्छा, तो गैतरा गांव ले दीपाली जी के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज के विषय है औषधि और सुगंधित जिन पौधा है उनकी खेती, तो एक बारे में क्या प्रश्न है आप पूछते हो?
3: भैया मैं जानना चाहत रहे हूँ, मोर घर के लगे लगे में मोर बाड़ी बखरी है और ओमा में लगाए हैं अभी सब्जी भाजी। सब्जी भाजी के संग माँ में हाँ औषधि पौधा के खेती कर सकता हूँ का, थोड़ा बहुत जैसे लगाना है मुला तो लगा सकता हूँ का, और कौन कौन से पौधा लगा सकता हूँ?
0: जी जी जी, आप मन के जिन सवाल है जवाब जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर तिरकीले।
1: नमस्कार दीदी। तो इसमें कुछ एक पौधे जो बहुत अच्छे हैं जिसको आप लगाना चाहिए, क्योंकि

0: हम कई एक चीज़ें जो होता है मार्केट से लेके लगाते हैं, लेकिन ये औषधि पौधे को अगर लगा के ताज़ा ताज़ा उसका उपयोग करें तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो मैं बोलूँगी तुलसी का पौधा जो आपने लगाया है, वो तुलसी का जो पौधा है वो आप ज़रूर अपने बागीचे में लगाएं। दूसरा मिंट मतलब पुदीना का पौधा, पुदीना आपको बहुत रिफ्रेशिंग रखता है, बहुत सारी चीज़ों में आप डालते हैं, उपयोग करते हैं, और जहाँ पे आपका कुआं है या फिर जहाँ पे आपका ओवरफ्लो पानी जो बह रहा है उस वाले जगह पे लगा सकते हैं। तीसरा आप मंडूक पर्णी और ब्राह्मी, इस दोनों को आप लगा सकते हैं। एक और होता है कालमेघ का पौधा, कालमेघ का पौधा भी उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा। कालमेघ का जो पौधा है, हर एक प्रकार का जो बुखार होता है, चाहे आपको मलेरिया है, चाहे आपका टाइफाइड वाला है, चाहे आपको सीजनल फीवर है, उसमें आप इस कालमेघ का पौधा का अर्क उबाल करके इसको पीने से वो हर प्रकार के ज्वर को ठीक करता है, साथ ही लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा सतावर हम उगा सकते हैं, और ये पौधा सतावर का बहुत ही खूबसूरत होता है। वो बागान को आपके कांटे से पूरा फेंसिंग को, घर के अंदर जानवरों का प्रवेश बंद करता है, साथ ही साथ इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि आपका बाड़ी को बहुत ही खूबसूरत एक लुक देगा।
1: धन्यवाद भैया।
2: तिरकी मैडम जी, किसान संगवारी मन के और संग संग किसान दीदी मन के घलो फोन आई, और यह विषय में अच्छा जानकारी और अच्छा सलाह आप मन दे हो, कहे के मतलब है कि भविष्य जन है औषधि और सुगंधित पौधा के, तो ये बहुत उज्जवल है और किसान संगवारी मन खातिर बहुत फायदा घलो है
0: जी।
2: संगवारी हो, हमारे ये कार्यक्रम हलो चौपाल में असली रौनक आपके फोन के माध्यम ले मिलते, आप मन के प्रश्न ले आते, अब ये कार्यक्रम के चमक यानी आभा होते हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ। तो आज के विषय रही से औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती और एक विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर एलिस तिरकी जी, प्रमुख वैज्ञानिक पादप कार्यकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। आप जम्मो झनला धन्यवाद आप मन फोन करे हो, और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ ले आप मन अपन शंका के समाधान करे हो। मैडम आप मन अपन जवाब ले और बहुत अच्छा जानकारी ले हमारे किसान संगवारी मन के और हमर ज्ञानवर्धन करे हो, और किसान संगवारी मन जरूर एक फायदा उठाई, एक खातिर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन स्टूडियो में आए अपन समय निकाले हो।
0: धन्यवाद
2: संगवारी हो, ये रही हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम हलो चौपाल। कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें श्री शशि प्रकाश पांडे जी, तकनीकी सहायक अंजू विजयन जी, और कार्यक्रम के संचालन करें आप मन के संगवारी लव कुमार सिंह। और आप मन जानकारी देना चाहबो कि कर रिकॉर्डिंग होते हर शुक्रवार 11:30 ले 12 बजे के बीच, और एक प्रसारण यही दिन यानी शुक्रवार के 7:30 बजे होते। तो यही तेर हमार हेलो चौपाल कार्यक्रम श्रावत है। जम्मो सुनिए संगवारी मल्ला, हमार ढाले राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही हमार विशेष फोन इन कार्यक्रम हलो चौपाल। पूजा देख, किसान संगवारी मन अपन प्रश्न पूछ के अपन जवाब घलो पागे, लेकिन अब हमार बारी है प्रश्न पूछे के।
3: बिल्कुल भैया, और ये प्रश्न पूछे के क्रम होते कृषक प्रश्न मंच, जेमा आज के प्रश्न है अपन बारी मा कौन कौन से औषधीय और सुगंधित पौधा लगा सकत हन। प्रश्न एक गाँव और दोहराव था, आज के प्रश्न है अपन बारी मा कौन कौन से औषधीय और सुगंधित पौधा हम लगा सकत हन। तो एक उत्तर झटकुन अपन लिख के हमार मेल आई डी में अपन भेज सकत हो, ताकि हम अवैया जो हफ्ता है तेमा हम शामिल कर पावन। और एक संग अब बेरा है पाछू हफ्ता के प्रश्न और उत्तर के। पाछू हफ्ता के प्रश्न रही से मई के महीना में प्रमुख रूप ले कौन से सब्जी के फसल लगाए जा सकते हैं, तक सही जवाब है भिंडी, बैगन, हरी मिर्चा और टमाटर, लौकी, खीरा और बहुत अकन फसल लगा सकते हैं।
2: सही जवाब जन सवारी भेजे मोला बधाई, और उनका नाम ला पढ़ देता हूँ मैं। सिंगारबाड़ी गुटकुले संतराम पटेल, किशन सोनम, मानवी पटेल, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी रेखा, पार्थ कश्यप, ज्योति प्रहलाद वर्मा और बंटी बबली, आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और चांदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुर्खी कला ले अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि आंशिंगा, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, ग्राम तेंदुभाटा मगर लोडले उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन सुरेंद्र, यशस्वी भास्कर, किशन दिव्यांश और भूपेश शिवा।
3: भैया अब बेरा है एक सूचना के। हाँ। सूचना है हेलो किसान वाणी की। हाँ। जेना अवैया मंगलवार माने 12 मई 2026 के प्रसारित होने वाला हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में विषय हुई गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। ये विषय में अपन

0: यही मेर समाप्त हुआ थी सूचना आओ एकरे संग हो के जाए की बिरा तो जाए के पहले बता देथन काली के कार्यक्रम काली गोट बात संग संझा बिरमा क्रमाज की सलामा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 ये विषय में जानकारी सुनू आप मन डॉक्टर देवेंद्र कुरेले आप मन सहायक प्राध्यापक हो और गीत संगीत और कृषक प्रश्न मंच तो होबे करही तो अब देव विदा स्वीकार हमार पूजा चंद्रवंशी और
1: लव कुमार सिंह के
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत दिया है राजेश रोशन ने, फिल्म का नाम है बाबू।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सितमगर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। बजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है जुदाई।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। कार्यक्रम में पहले सुनिए पामेला बसु के आवाज़ में रमाशंकर तिवारी की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे पामेला बसु और अशोक श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का दिन बेहद अच्छा है भारत के लिए, और अच्छा ही रहता है अगर स्पोर्ट्स खेल जगत में हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तो आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया। तो शुरुआत करते हैं हम आईपीएल क्रिकेट से, जो कि दिल्ली में ही चल रहा है और दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अभी मुकाबला जारी है। अगर ताज़ा हालात देखें तो 13 ओवर चल रहा है, 5 विकेट गिर चुके हैं, दिल्ली 91 रन बनाई हुई अभी तक, और अंक तालिका में देखें तो दिल्ली 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीम के पास हार की कोई गुंजाइश नहीं है।
1: मुझे लगता है कि जीतना भी जो है वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाला मामला है एक तरह से, क्योंकि प्लेऑफ मतलब मैथमेटिकली आप किसी टीम को बाहर नहीं बोल सकते हैं, पर प्लेऑफ की दौड़ से एक तरह से बाहर ही हैं दोनों ही टीमें। पर डीसी के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि घर पे खेल रही हैं और चाहेंगी कि घर पे कम से कम एक जीत दर्ज करें, पर जिस तरह से इस साल का पूरा IPL गया है दोनों ही टीमों के लिए, मुझे लगता है कि जीतना जो है, जैसा मैंने कहा, वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाली चीज़ है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ एट स्टेक नहीं है। हाँ, हमारे चीफ कोच साहब ज़रूर मैच देख रहे हैं तो उनको इम्प्रेस करने की ज़रूर एक कोशिश हो सकती है कुछ भारतीय खिलाड़ियों की आने वाले कुछ समय में भारत की टीम में अपने अलग अलग फॉर्मेट्स में, स्पेशली T20 में अपनी दावेदारी पेश करने का।
0: बिल्कुल, और अगर आज कोई भी टीम हारती है तो फिर वो नॉकआउट में नहीं जा पाएगी। और कल के मुकाबले में देखिए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। पूरे मैच का हाल जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही। बारिश से प्रभावित मुकाबला डकवर्थ लुइस के चलते 19-19 ओवर का कर दिया गया। LSG ने 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए। मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेली। DLS के तहत मिले 213 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जैकब बैथल और विराट कोहली दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। बीच के ओवरों में देवदत्त पडिकल और कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। पडिकल ने 34, वहीं रजत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 61 रन की दमदार पारी खेली। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 जबकि कृणाल पांड्या ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, पर टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में LSG की ओर से प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: 9 विकेट कह दिया था हमने, माफ कीजिएगा, 9 रन से हराया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो कल का मैच बेहद रोमांचक रहा, भले ही बारिश ने खलल डाली।
1: उस खलल की वजह से मुझे लगता है LSG को फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैच जितना देर से जाता है उतना जो स्टार्ट स्टॉप मैचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के लिए, पब्लिक के लिए तो होता ही है, दर्शकों के लिए, पर खिलाड़ी के लिए भी बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप खेलने उतर हैं, थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, तैयार होते हैं और आधा 15-20 मिनट आप खेलते हैं, फिर बारिश आ जाती है और वो बारिश भी ऐसी होती है जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैच रोकती है। तो आप 8 बजे खेलते हैं, फिर आपका मैच रुक जाता है, फिर 9 बजे शुरू होता है, फिर आप कुछ ओवर खेलते हैं, फिर 10 बजे शुरू होता है, मैच रुक जाता है, तो किसी भी टीम के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जो टीम चेस कर रही है उसके लिए भी चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कंडीशंस की वजह से, टाइम की वजह से, हर चीज़ की वजह से। उसके बावजूद जिस तरह की शुरुआत RCB को मिली थी, बहुत तेज़ी से उनके पहले 2-3 विकेट निकल गए थे, तो उसके बाद आपने 203 के आसपास 203 का टोटल खड़ा करना, वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी RCB के लिए। और जो डीएलएस की बात अक्सर होती है कि एक फॉर्मूला जरूर है लेकिन आज तक किसी को समझ आया नहीं है. 209 एलएसजी ने बनाए थे लेकिन क्योंकि आधा मैच उन्होंने 20 ओवर के हिसाब से खेला था और बाकी आधा जो है वो 19 ओवर के हिसाब से हुआ था, तो जो फाइनल टारगेट था वो उनके टोटल से भी 4 रन एक्स्ट्रा था, 213 का मिला था उनको. तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं. फिर भी अगर जैसे मैंने कहा, अगर ऊपर के आपके 2-3 जो बल्लेबाज हैं वो अगर 5-5, 10-10 रन भी और बना लेते या थोड़ा सा बेटर कर जाते, जिसमें सबसे बड़ा विकेट जो था वो शायद विराट कोहली का ही था क्योंकि अगर वो रहते तो इतना लंबा नहीं जाता, वो पहले मैच खत्म भी कर सकते हैं, उनमें इतनी है ताकत, इतनी क्षमता है उनकी. तो बहुत ही दिलचस्प मैच था लेकिन दोनों ही टीमों के लिए. हालांकि एलएसजी बहुत खुश होगी कि बिल्कुल लास्ट चल रही थी तो 2 पॉइंट जो मिले वो बहुत जरूरी थे उनके लिए, और वो भी घर पे खेलते हुए, कि एकाना पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा. पर टीमों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है जब ऐसे कंडीशंस में आपको परफॉर्म करना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है.
0: पहली बार लखनऊ ने अपने घरेलू सरजमी पर जीत भी हासिल की है, तो अब पूरा का पूरा आईपीएल ही इस बार काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है.
1: जी,
0: अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप की. चीन के शंघाई में चल रहा है दूसरे चरण का मैच है. रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पदक की उम्मीदें बरकरार रखी है. सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वहीं साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सिमरनजीत ने चीनी ताइपे के फोंग यू झू को 6-0 से हराया, जबकि साहिल ने रोमांचक शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. तो अगर हम देखें कि पूरा का पूरा ये जो हमारा पारंपरिक रूप से भारत की ताकत मानी जाती है तीरंदाजी, और इसमें जब पुरुष महिला और मिश्रित यानी कि मिक्स टीम स्पर्धाओं में भारत पोडियम पर जगह बनाने में नाकाम रहा था, तो लेकिन जब टीम स्पर्धाओं में मिले इस हार के बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत स्पर्धा में हमारे इन खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है,
1: उससे बड़ी बात ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो नाम हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उनकी जगह जो यंगस्टर्स हैं, जो पिछले कुछ समय में ही जिन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया है, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है. क्योंकि अब चाहे वो तरुणदीप राय हों या धीरज भी यंग ही हैं लेकिन एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, या दीपिका कुमारी हों, ये बहुत सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं और इनके इनके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई शक नहीं है. पर हमें अब आगे देखना चाहिए, हम पीछे देखते हुए नहीं चल सकते हैं. और यहाँ पे भी जो सिमरनजीत है वो सिर्फ 3 पॉइंट से क्वालिफाइंग में दीपिका से पीछे रह गई थी टीम में आने से, तो इंडिविजुअल में उन्होंने प्रूव किया कि वो भारत का भविष्य है आर्चरी के हिसाब से. और वो मुझे लगता है क्योंकि इस साल आगे अभी हमारे पास एशियन गेम्स भी है जो बहुत जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं वहां पे इतना आसान नहीं होगा. बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि जस्ट कि शूटिंग या वर्ल्ड कप में ये शूटिंग या आर्चरी में साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं, तो हर फेज में जो बाकी के कंट्रीज भी हैं, हमारे भी जो फेडरेशन है वो आपको मिक्स एंड मैच करके ही खिलाती है, ताकि जो बड़े टूर्नामेंट है वहां के लिए आपको अपने बेस्ट खिलाड़ी मिल सके. और वो टेस्ट मुझे लगता है एशियन गेम्स में ही होगा. यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उससे चाहे वो साहिल हो या सिमरनजीत हो, उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, पर ये पहली ही सीढ़ी है अभी आगे बढ़ने के लिए. अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है इन लोगों के लिए.
0: बिल्कुल, अभी आपने जिस तरह से नाम लिया धीरज का और या फिर बाकी दीपिका का, तो इन खिलाड़ियों से हमें काफी उम्मीदें थी और ये आगे नहीं बढ़ पाई, और उसके बाद हमें ये नए यंगस्टर्स देखने को मिल रहे हैं. तो कहते हैं ना कि खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, और ये हमें देखने को भी मिला है. भले उनसे उम्मीदें नहीं थी लेकिन ये हमारे भविष्य बनकर उभरे हैं. तो बता दें कि सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर 1 के खिलाड़ी कोंग चेओंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिरार्ड का सामना करेंगे, और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए चुनौती काफी
1: बिल्कुल भारी रहेगी, आसान बिल्कुल नहीं होगा, खास करके सिमरनजीत के लिए, क्योंकि कोरिया का एक तरह से राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। वहां पे प्राइमरी स्कूल से आप शुरू कर देते हैं और बहुत सीरियसली लिया जाता है, और टीम इवेंट में कोरिया भारत से जिस तरह से हारी है महिलाओं से, कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रूव करना होगा कि वो जो हार थी वो एक फ्लूक हार थी, क्योंकि वो बहुत सीरियसली लेते हैं आर्चरी को, जैसा मैंने कहा, तो आसान बिल्कुल नहीं होगा। और कंपाउंड में भारत की जो भारत के तीरंदाज हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर फ्रांस हमें भूलना चाहिए कि कंपाउंड में अच्छी बहुत स्ट्रांग टीम है, फ्रांस को लाइटली लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा वहां पे।
0: बिल्कुल, दोनों ही के सामने चुनौतियां भले ही मुश्किल है, लेकिन दोनों ही विश्व कप में अपना पहला पदक जीतने से सिर्फ एक जीत ही दूर है। और हम तीरंदाज की बात कर रहे हैं तो निशानेबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने हरियाणा के रोहित कन्यान की कड़ी चुनौती को पार करते हुए भोपाल में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भले ही ये हमारा घरेलू मैच हो, घरेलू टूर्नामेंट हो, फिर भी हमारे खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पारंपरिक खेलों में।
1: ये घरेलू जरूर है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है जो जहां पे परफॉर्म करना और जहां पे अच्छा प्रदर्शन करना एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है, क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन बहुत मजबूत होता है, बहुत और नए खिलाड़ी बहुत निकल के आते हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है और मावलांकर टूर्नामेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और रुद्रांश की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर पेरिस के लिए क्वालिफाई ना कर पाने की जो टीस है, जो उनको नहीं जगह मिल पाई थी, वो बहुत उनको अभी भी अंदर से चुभ रही होगी, तो वो चीज उसकी, इसीलिए अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो उन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद यही है कि इसी को आगे लेके चलेंगे और एशियन गेम्स में हमें उनसे और पदक की उम्मीद रखेंगे।
0: बिल्कुल। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूझों में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की, और भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है भारतीय महिला टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर।
1: बिल्कुल, मैं लगातार ये कहती रही हूँ कि अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भले ही जो पुरुष फुटबॉल है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो भारत में हो या विश्व लेवल पे भी हो, पर अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमें अपनी महिला टीम से ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए और उनको और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन है, हर चाहे वो एज ग्रुप में हो या सीनियर लेवल पे भी हो, जिस तरह से हमारी महिला फुटबॉल टीम ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो रिजल्ट उनके फेवर में उतना नहीं भी आया हो, पर जो उनका प्रदर्शन है मजबूत टीमों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिलाता है कि अगर उनको उतनी ही सुविधाएं मिले, उतना ही एक्सपोजर मिले और उतनी ही उनको एनकरेजमेंट मिले, तो वो मैं आज भी अब भी ये मानती हूँ कि महिला टीम जो है वो पुरुषों से पहले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी। हमारे देश में उतना नहीं है, पर जो खिलाड़ियों का है, अगर आपको याद हो तो जो सीनियर एशियन कप भी हुआ था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, उसमें मलीशा कल्याण का एक गोल था जो दुनिया भर में वायरल हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला। अगर उस ऐसी चीज़ें और ज़्यादा पॉपुलराइज की जाएंगी तो मुझे लगता है महिला टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
0: बिल्कुल, और अगर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है भारतीय टीम तो 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भी भारत का स्थान पक्का हो जाएगा। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बता देना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया, और इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में भी आकाशवाणी की आवाज गूंजती रहेंगी, बिल्कुल गूंजती रहेंगी, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ अपना ये जो सफर है वो जारी रहेगा। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
4: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
3: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
6: 2 दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के

कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। एसएच बिहारी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बाहर आने तक। इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाजों में। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए रुदाली फिल्म का ये गीत भूपेंद्र हजारिका की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है भूपेंद्र हजारिका ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। करंट अफेयर्स ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath Temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, बरसों से है, आज से नहीं, और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
0: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनः निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
0: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमार पाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया. एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों, शैव दोनों मिलकर किया. तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए. 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी,

0: and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
1: Right.
0: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion, it's food, you know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाएं, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए।
1: जी,
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5,000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। साहब, सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, 4 सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, to endure, and most importantly, to move forward with confidence. So on that very interesting note, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. So that's it from us, listeners, on this program. You can also listen to our program, Current Affairs, on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.

कुर्म का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत की है कुमार पंडित ने।

अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार कुर्म का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए विजय कुमार कुर्म का ही बांसुरी पर बजाया खमाज में एक धुन।

और राग खमाज में धुन। आपके साथ तबले पर संगतकार थे कुमार पंडित। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सोम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पतिता फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत को सुनना चाहे है आप सभी ने। भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश आरती यदु। हथनीपारा भाटापारा से हैं चुआराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा। सिरी गातापार से हैं धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, पिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, कुमारी मोनिका, कुमारी पूनम साहू। सिरी गातापारा से ही हैं कुमारी लावण्या, उपासना देवराज, ओम कुमार और पुष्पराज प्रभुराम साहू। रायपुर नगर से हैं राजेश अम्बादे, शशिकला और पूजा अम्बादे। सिहावा ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। धरसीवा से हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी। दुर्गापारा संतोषी नगर से हैं छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव और अनुराग अभिषेक। हिंसा महासमुंद से हैं अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा और गायत्री वैष्णव। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। कुल्हारी कोट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप। आप सभी ने सुनना चाहा है पतिता फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पारस मणि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं असद भूपाली और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पोस्ट कार्ड लिख भेजा है आप सभी ने। शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा। कोटा से हैं योगिता वर्मा, रुचि खुशी ओजल वर्मा कोटा से ही हैं, अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर और दिनेश सेन। पावर हाउस जामुल से हैं विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय प्रधान और पूजा प्रधान। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। बागबहरा भद्रसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। सेक्टर 8 बिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला नटखट, आसमा श्याम कुंवर। पहरा अहिवारा से हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। धरदी सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत और कृष्टि पटवा। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल। धमधा ग्राम सुर्खी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। आप सभी ने सुना चाहा है पारस मणि फिल्म का ये गीत।

हेमंत कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए खामोशी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पोस्टकार्ड लिख भेजा है आप सभी ने। बेमे तरह से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। खैरागढ़ से हैं रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा। दतरेंगी से हैं विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु। शीतला नगर दुर्ग से हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। धवलपुर गरियाबंद से हैं गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, धनंजय और अर्चना मिश्रा। इसी गीत के लिए आप सभी ने ईमेल लिख भेजा है। पुटियाकला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। कोरासी भैंसा रायपुर से हैं पवन कुमार साहू, कांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू। अवरेठी पारा भाटापारा से हैं अनिता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा साहू। खमार मोड़ा से हैं सतीश गिरी गोस्वामी और श्यांश गिरी गोस्वामी। रानीगांव नगरी धमतरी से हैं अखिलेश कुमार साहू, चित्रेखा, शुभम और सिजल साहू। खल्लारी भीमकोस से हैं जीएल साहू, सरोज, छोटी और पिंकी। आप सभी ने सुनना चाहा है खामोशी फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म का ये गीत। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है रवि ने और पसंद है आप सभी की। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। अरमरी खुर्द दुर्ग से हैं चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। भाटापारा से हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी। बेमित्रा से हैं राज और सारिका वैष्णव। भाटापारा से हैं रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज अल्फेज और सादिया खान। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू।

बाजार पारा महासमुंद से हैं भीष्मदास, नर्मदा, हिरमणि, दीपक और लक्ष्यदास। गंडई टिकरी पारा से हैं जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री और ऋषभ रिचा देवांगन। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। कोहका भिलाई से हैं प्रताप पांडे और रेखा पांडे। तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है वक्त फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ममता फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं रोशन। इस गीत के लिए हमें पोस्ट कार्ड लिख भेजा है आप सभी ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा।

अरुणा वर्मा, सिमगा से हैं श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन, भाटापारा दत्रेंगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा, रायगढ़ से हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम और उल्लाह अकरम नूरजहां, राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम और आबिदा तिवारी, लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता, बीबी पूजा, बीबी स्वाति, कीरत राय, दीपक, प्रदीप, संध्या, माही, चुटकी और शरद डोडवानी। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर। हटौद बाजार लाहौर से हैं कमलनाथ पटेल, रोमेश पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल। रुआ बांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन और युवराज साहू। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गेंदाटोला बाजार चौक से हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता और गजेंद्र गुप्ता। संबलपुर कांकेर से हैं फाकुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। अडार नांदघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश और दीपेश वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत ममता फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said,